0: जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: I have a

0: इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और इस तरह ये अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते और दुनिया को रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। कस्मों को ढाल बना रखा है,
1: यानी अपने मुसलमान और मोमिन होने का यकीन दिलाने के लिए जो कस्में वो खाते हैं उनसे वो ढाल का काम लेते हैं ताकि मुसलमानों के गुस्से से बचे रहें और उनके साथ मुसलमान वो बर्ताव न कर सकें जो खुले खुले दुश्मनों से किया जाता है। इन कस्मों से मुराद वो कस्में भी हो सकती हैं जो वो बिलउमूम अपने ईमान का यकीन दिलाने के लिए खाया करते थे, और वो कस्में भी हो सकती हैं जो अपने किसी मुनाफिकाना हरकत के पकड़े जाने पर वो खाते थे ताकि मुसलमानों को ये यकीन दिलाएं कि वो हरकत उन्होंने मुनाफिकत की बिना पर नहीं की थी। और वो कस्में भी हो सकती हैं जो अब्दुल्ला बिन उबई ने हजरत जैद बिन अरकम की दी हुई खबर को झुटलाने के लिए खाई थी। इन सब एहतमालात के साथ एक एहतमाल ये भी है कि अल्लाह ताला ने उनके इस कौल को कसम करार दिया हो कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस आखिरी एहतमाल की बिना पर फुकहा के दरमियान ये बहस पैदा हुई कि कोई शख्स मैं शहादत देता हूं के अल्फाज कहकर कोई बात बयान करे तो आया उसे कसम या हलफ यानी ओथ करार दिया जाएगा या नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके असहाब इमाम जुफर के सिवा और इमाम सुफियान सौरी और इमाम औजाई इसे हलफ शरई इस्तिलाह में यमीन करार देते हैं। इमाम जुफर कहते हैं कि यह हलफ नहीं है। इमाम मालिक से दो कौल मरवी हैं, एक ये कि वो मुतलकन हलफ है और दूसरा कौल यह है कि अगर उसने शहादत देता हूं के अल्फाज कहते वक्त नीयत यह की हो कि खुदा की कसम मैं शहादत देता हूं या खुदा को गवाह करके मैं शहादत देता हूं तो इस सूरत में यह हल्फिया बयान होगा वरना नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कहने वाला ये अल्फाज भी कहे कि मैं खुदा को गवाह करके शहादत देता हूं तब भी उसका यह बयान हल्फिया बयान न होगा इल्ला ये कि अल्फाज उसने हलफ उठाने की नीयत से कहे हों। बहवाले अहकामुल कुरान लिल जस्सास और अहकामुल कुरान लिब्नुल अरबी।
0: और दुनिया को रोकते हैं।
1: सद का लफ्ज अरबी जबान में लाजिम भी है और मुतअद्दी भी, इसलिए सद्दू अन सबीलिल्लाह के मानी ये भी है कि वो अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते हैं और ये भी है कि वो इस रास्ते से दूसरों को रोकते हैं। इसीलिए हमने तर्जुमे में दोनों मानी दर्ज कर दिए हैं। पहले मानी के लिहाज से मतलब ये होगा कि अपनी इन कस्मों के जरिए से मुसलमानों के अंदर अपनी जगह महफूज कर लेने के बाद वो अपने लिए ईमान के तकाजे पूरे न करने और खुदा और रसूल की इताअत से पहलू तही करने की आसानियां पैदा कर लेते हैं। दूसरे मानी के लिहाज से मतलब ये होगा कि अपनी इन झूठी कस्मों की आड़ में वो शिकार खेलते हैं, मुसलमान बनकर मुसलमानों की जमात में अंदर से रखने डालते हैं, मुसलमानों के असरार से वाकिफ होकर दुश्मनों को उनकी खबरें पहुंचाते हैं, इस्लाम से गैर मुस्लिमों को बदगुमान करने और सादल्लाह मुसलमानों के दिलों में शुभात और वसवसे डालने के लिए वो हरबे इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ एक मुसलमान बना हुआ मुनाफिक ही इस्तेमाल कर सकता है। खुला खुला दुश्मन इस्लाम उनसे काम नहीं ले सकता।

0: उसने जमीन और आसमानों को बरहक पैदा किया है और तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी उम्दा बनाई है और उसी की तरफ आखिरकार तुम्हें पलटना है।
1: इस आयत में तीन बातें अलग तरतीब बयान की गई हैं जिनके दरमियान एक बहुत गहरा मंतकी रब्त है। पहली बात यह फरमाई गई कि अल्लाह ने यह कायनात बरहक पैदा की है। बरहक का लफ्ज जब खबर के लिए बोला जाता है तो मुराद होती है सच्ची खबर। हुक्म के लिए बोला जाता है तो मतलब होता है मबनी बर अदल और इंसाफ हुक्म। कौल के लिए बोला जाता है तो मकसूद होता है रास्त और दुरुस्त कौल। और जब किसी फेल के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है तो मुराद ऐसा फेल होता है जो हकीमाना और माकूल हो, न कि लायानी और फजूल। अब यह जाहिर है कि खल्क एक फेल है, इसलिए तख्लीक कायनात को बरहक कहने का मतलब ला महाला यह है कि यह कायनात कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी गई है, बल्कि यह एक खालिक हकीम का नहायत संजीदा काम है। इसकी हर चीज अपने पीछे एक माकूल मकसद रखती है और यह मकसदियत इसमें इतनी नुमाया है कि अगर कोई साहिब अक्ल इंसान किसी चीज की नौइयत को अच्छी तरह समझ ले तो ये जान लेना उसके लिए मुश्किल नहीं होता कि ऐसी एक चीज के पैदा करने का माकूल और मबनी बर हिकमत मकसद क्या हो सकता है। दुनिया में इंसान की सारी साइंटिफिक तरक्की इस बात की शहादत दे रही है कि जिस चीज की नौइयत को भी इंसान ने गौर फिक्र और तहकीक तजस्सुस से समझ लिया उसके बारे में ये बात भी उसे आखिरकार मालूम हो गई कि वो किस मकसद के लिए बनाई गई है। और उस मकसद को समझकर ही इंसान ने वो बेशुमार चीजें ईजाद कर ली जो आज इंसानी तमद्दुन में इस्तेमाल हो रही हैं। ये बात हरगिज मुमकिन न होती अगर ये कायनात किसी खिलौने का खिलौना होती जिसमें कोई हिकमत और मकसदियत कारफरमा न होती। दूसरी बात यह फरमाई गई कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया है। सूरत से मुराद महज इंसान का चेहरा नहीं है, बल्कि इससे मुराद उसकी पूरी जिस्मानी साख्त है और वो कुव्वतें और सलाहियतें भी इसके मफहूम में शामिल हैं जो इस दुनिया में काम करने के लिए आदमी को अता की गई हैं। इन दोनों हैसियतों से इंसान को जमीन की मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया गया है और इसी बिना पर वो इस काबिल हुआ है कि उन तमाम मौजूदात पर हुक्मरानी करे जो जमीन और उसके गिर्दोपेश में पाई जाती हैं। उसको खड़ा कद दिया गया है, उसको चलने के लिए मुनासिब तरीन पांव दिए गए हैं, उसको काम करने के लिए मौजू तरीन हाथ दिए गए हैं, उसको ऐसे हवास और ऐसे आलात इल्म दिए गए हैं जिनके जरिए से वो हर तरह की मालूमात हासिल करता है, उसको सोचने और समझने और मालूमात को जमा करके उनसे नतायज अखज करने के लिए एक आला दर्जे का जहन दिया गया है, उसको एक अखलाकी हिस और कुव्वत तमीज दी गई है जिसकी बिना पर वो भलाई और बुराई और सही और गलत में फर्क करता है, उसको एक कुव्वत फैसला दी गई है जिससे काम लेकर वो अपनी राह अमल का खुद इंतखाब करता है और ये तय करता है कि अपनी कोशिशों को किस रास्ते पर लगाए और किस पर न लगाए, उसको यहां तक आजादी दे दी गई है कि चाहे तो अपने खालिक को माने और उसकी बंदगी करे वरना उसका इनकार कर दे, या जिन जिन को चाहे अपना खुदा बना बैठे, या जिसे खुदा मानता हो उसके खिलाफ भी बगावत करना चाहे तो कर गुजरे। इन सारी कुव्वतों और इन सारे इख्तियारात के साथ उसे खुदा ने अपनी पैदा करदा बेशुमार मखलूकात पर तसर्रुफ करने का इख्तदार दिया है और वो अमलन इस इख्तदार को इस्तेमाल कर रहा है। इन दो बातों से जो ऊपर बयान की गई हैं, बिल्कुल एक मंतकी नतीजे के तौर पर वो तीसरी बात खुद ब खुद निकलती है जो आयत के तीसरे फकरे में इरशाद हुई है कि उसी की तरफ आखिरकार तुम्हें पलटना है। जाहिर बात है जब ऐसे एक हकीमाना और बामकसद निजाम कायनात में ऐसी एक बाख्तियार मखलूक पैदा की गई है तो हिकमत का तकाजा हरगिज ये नहीं है कि उसे यहां शुतरे बेमुहार की तरह गैर जिम्मेदार बनाकर छोड़ दिया जाए, बल्कि लाजमन इसका तकाजा यह है कि यह मखलूक उस हस्ती के सामने जवाबदेह हो जिसने उसे इन इख्तियारात के साथ अपनी कायनात में यह मकाम मर्तबा अता किया है। पलटने से मुराद इस आयत में महज पलटना नहीं है बल्कि जवाबदेही के लिए पलटना है, और बात की आयत में सराहत कर दी गई है कि यह वापसी इस जिंदगी में नहीं बल्कि मरने के बाद दूसरी जिंदगी में होगी और इसका असल वक्त वो होगा जब पूरी नौ इंसानी को अज़ सरे नौ जिंदा करके बयक वक्त मुहासिबे के लिए इकट्ठा किया जाएगा। اور اس محاسبے کے نتیجے میں جزا و سزا اس بنیاد پر ہوگی کہ آدمی نے خدا کے دیے ہوئے اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کیا یا غلط طریقے سے۔ رہا یہ سوال کہ یہ جواب دہی دنیا کی موجودہ زندگی میں کیوں نہیں ہو سکتی، اور اس کا صحیح وقت مرنے کے بعد دوسری زندگی ہی کیوں ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ جواب دہی اس وقت ہو جب پوری نوع انسانی اس دنیا میں ختم ہو جائے اور تمام اولین و آخرین کو بیک وقت دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے۔ آدمی ذرا بھی عقل سے کام لے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی سراسر معقول ہے، اور حکمت و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ محاسبہ دوسری زندگی ہی میں ہو اور سب انسانوں کا ایک ساتھ ہو۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے پورے کارنامہ حیات کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے اس کی جواب دہی کا صحیح وقت لازماً وہی ہونا چاہیے جب اس کا کارنامہ حیات مکمل ہو چکا ہو۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان ان تمام اثرات و نتائج کے لیے ذمہ دار ہے جو اس کے افعال سے دوسروں کی زندگی پر مترتب ہوئے ہوں، اور وہ اثرات و نتائج اس کے مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے بعد مدت ہائے دراز تک چلتے رہتے ہیں۔ لہذا صحیح محاسبہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پوری نوع انسانی کا کارنامہ حیات ختم ہو جائے اور تمام اولین و آخرین بیک وقت جواب دہی کے لیے جمع کیے جائیں۔

0: क्या तुम्हें उन लोगों की कोई खबर नहीं पहुंची जिन्होंने इससे पहले कुफ्र किया और फिर अपनी शामत आमाल का मजा चख लिया, और आगे उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है।
1: यानी दुनिया में उन्होंने शामत आमाल का जो मजा चखा वो उनके जरायम की ना असल सजा थी ना पूरी सजा। असली और पूरी सजा तो अभी आखरत में उनको भुगतनी है, लेकिन दुनिया में जो अजाब उन पर आया इससे लोग ये सबक ले सकते हैं कि जिन कौमों ने भी अपने रब के मुकाबले में कुफ्र का रवैया अख्तियार किया वो किस तरह बिगड़ती चली गईं और आखिर किस अंजाम से दोचार हुईं।

के बाद हर बंदे की हर बात की इम्पोर्टेंस होती है और वैल्यू होती है। जितनी मैं बात करता हूँ, जितना मैं खून जलाता हूँ, जितना मैं अपने जज्बात को अल्फाज में और उसके आप को यू नो रियलिटी में रख के देता हूँ, अगर मेरे इन अल्फाज की किसी बंदे के पास भी वैल्यू नहीं है, चाहे वो माँ बाप क्यों ना हो, बहन भाई क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, बिजनेस पार्टनर्स क्यों ना हो, कोई भी हो, उसकी सज़ा है। ताकि उनको पता चले कि जो क्रेडिट डेबिट हो रहा है बैंक में, जब आप पैसे डालें और आपको पैसे ना मिले वापस, उस वक्त तो आप पागल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान आपकी ज़िंदगी में अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी डाल रहा है और वो वापस कुछ नहीं आ रहा, बल्कि अंधे, गहरे, काले, बॉटमलेस पिट के अंदर जा रहा है, तो उसमें ज़ाहरी बात है गुस्सा, तकलीफ़, परेशानी उसके वापस जब आपको नहीं मिलेगा तो आपको लग पता जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब किसी चीज़ के साथ कॉन्सिक्वेंसेज अटैच नहीं होते, कोई गौर से नहीं सुनता। इसीलिए मैंने बहुत नाइस होकर देख लिया, बहुत अच्छा बच्चा बन के देख लिया, लोगों को प्यार मोहब्बत भी करके देख लिया, इज्जत भी दे के देख लिया, टाइम भी दे के देख लीजिए लिया मैंने। बाद में मुझे ये पता चला इसमें 90% जो है वो अभी तक हैवानी हालत में, बेसिकली जानवर हैं, और वही उनका जो बेसिक जो माहौल है कि फाइट एंड फ्लाइट वाला। इसके अलावा फाइट या फ्लाइट, इस मोड के बंदे से मोहब्बत नहीं की जा सकती, दोस्ती नहीं की जा सकती, उसके साथ रिश्ते नहीं रखे जा सकते, उसके साथ बिजनेस नहीं किया जा सकता, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जानवर है। या तो वो भाग जाएगा या वो लड़ पड़ेगा। ये दो चीज़ें नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ना भागने की ज़रूरत है ना लड़ने की ज़रूरत है। आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करके पास्ट में क्या क्या आपके लिए किया है उसको सामने रख के आपका बनता क्या है उस हिसाब से डील करना है हमारे साथ या हमको उनके साथ। जब तक आपको याद ही कुछ नहीं, याददाश्त ही आपकी काम नहीं कर रही, आप सब भूल गए हैं, आपको कितने पैसे अभी तक बना के दिए ये भूल गए, आप थोड़ा सा नुकसान हुआ है तो आप रोने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है वही फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड चल रहा है, हैवानी हालत में आप, आपको याद ही नहीं है किस बंदे के साथ आप क्या बात कर रहे हैं, किस आदमी ने कहाँ आपको सपोर्ट किया, कहाँ आपको जहाँ पर कुछ नहीं, कोई नहीं खड़ा होता था वहाँ खड़े होकर आज रोज़ खड़ा होना पड़ेगा क्या, उस पिछले का हिसाब किताब क्या है। जब मैंने ये चीज़ें करके देखी और ये मैंने रब से जब सीखा, किताब से, तो मुझे समझ आई ये सारी बातों कि रब हमारे साथ इसीलिए जन्नत दोजख में डील करता है, अच्छाई बुराई में डील करता है, जिसका जितना बनता है उसके हिसाब से उसको देने में डील करता है। जब वो कहता है कि तुम वो जो सब इंसान बराबर नहीं है, जानने वाला ना जानने वालों के बराबर नहीं हो सकता, तो ये सारी इसी तरह देने वाला और ना देने वाला, कुछ करने वाला और कुछ ज़बानी कलामी करने वाला, कोई फिज़िकली कोई चीज़ करके देने वाला और कोई सिर्फ जज्बाती ड्रामे करने वाला, क्या ये लोग बराबर हो सकते हैं? तो जब ये नहीं हो सकते तो ज़िंदगी मेरी होगी बड़ी आसान। और हर बंदा अपनी अपनी जगह पे पहुंच गया और उसके बाद जिस जिसने जहां जहां जिनको बहुत बहुत फ़ायदे भी हुए, और करना कुछ नहीं है, एटीट्यूड चेंज करना है, कोशिश करनी है, आप जो बोलें, जो कमिटमेंट करें उसको पूरा करने की कोशिश करना है, कम अज़ कम इतना ज़रूर दिखे कि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते, इसकी सज़ाएँ होती हैं, सिंपल सी बात। मैं यही देने के पहले ज़िंदगी के 40 साल समझाता रहा, बताता रहा, करके दिखाता रहा, नाराज़ होता रहा, गुस्सा करता रहा, स्पेस देता रहा, सब करके देख लिया। अब वो सारा काम बंद, अब सिर्फ जो बोला है आपने वो करना होगा, नहीं करेंगे उसका हिसाब किताब होगा। पीरियोडिकली हर मंथ मैं चीज़ें देखता हूँ, हर क्वार्टरली 3 महीने के बाद मैं चीज़ें देखता हूँ, हर ईयरली मैं चीज़ें देखता हूँ, उसमें जो जिसका हिसाब किताब है उसके हिसाब से मैं डील करके काम को या तो रखता हूँ या नहीं रखता। क्यों करता हूँ ऐसा मैं? क्योंकि मुझे इंशाल्लाह एक दिन मर जाना है, और जो चीज़ मर जानी है, जो चीज़ ख़त्म हो जानी है, और अगर मैं ये आपको करके नहीं दिखाऊंगा तो आप सारी ज़िंदगी फजूल बातें लोगों की करके, जो किताबों में आपने पढ़ी हैं और जो आपको किसी ने बता दिया है, वही बातें करके आप मर जाएंगे और मेरा भी टाइम ज़ाया कर जाएंगे, और सिर्फ बातें करेंगे लोग, मोहब्बतों की बातें, दोस्ती की बातें, इश्क की बातें, पार्टनरशिप्स की बातें, यारी की बातें। ये बातें सुनने के लिए मैं दुनिया में नहीं पैदा हुआ, मैं ये देखने के लिए पैदा हुआ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इसके रिजल्ट्स भी। क्योंकि मैं अब जब आदमी एक चीज़ देख लेता है, समझ लेता है, तो उसके बाद उसको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल होता है। तो 2% के कंट्रीब्यूशन के ऊपर मैं 10% आपको दे दूंगा या 5% पे, 40, 50, 60, 70, 80, 90% आप मर भी जाएंगे तो मैं नहीं दूंगा, ये मैं किसी और को दे दूंगा, मैं कुत्तों को डाल दूंगा, इंसानों को नहीं दूंगा। तो ये बड़ा सिंपल सा कानून है, जब आप इस पे अप्लाई करते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, और आपकी हर बात सुनी जाती है, समझी जाती है, और उस हिसाब से डील किया जाता है। और इससे पहले मैं सोचता था कि लोग, अगर आप 10, 15, 20 साल किसी के साथ चलें और अपनी तमाम डीलिंग्स वो देख भी ले, तो उसको शायद शर्म आती हो, चाहे कोई हया आती हो, चाहे उसमें गैरत हो, चाहे उसमें थोड़ी बहुत समझ हो,

0: और उसके बाद वो हमारे साथ आम लोगों की तरह डील ना करे तो मैं गलत था। इसका सिंपल सा तरीक़ेकार ये है, किसी को कुछ याद नहीं रहता, सब को एक धक्का लगा हुआ है, सबको सर्वाइवल का कीड़ा काट गया है और किसी आदमी का कोई दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होगा, जिसने जो किया जब आप उसके साथ डील करेंगे, ना आपको प्रेशर होगा, ना आपको गुस्सा आएगा, ना आपको तकलीफ़ होगी। जिसने जो किया उसके सामने आप बैठ के कहेंगे, आपको ये कहा गया था, ये आपने कहा था, ये काम आपको करना था, इतना आपने किया इतना आपका बनता है, इतना आपने नहीं किया ये आपका नहीं बनता, बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया तो आपका कुछ भी नहीं बनता। जब आप ये क्लियर कट बात करेंगे तो फिर आगे से कोई भी बोलने के काबिल नहीं होगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि वो घबराते हैं बात करने से, वो उसके सामने जाते नहीं हैं, वो फलां बंदे से डरते हैं, वो किसी से कोई भी नहीं डरता। लोग अपने सगे माँ बाप से भी नहीं डरते, एक बात, लोग सच ये है कि खुदा से भी नहीं डरते। कार्रवाई हमने डाली हुई है, अगर डरते तो वो उसने जो चार पांच चीज़ें बोली हैं वो हम कभी भी ना करते, तो इसका मतलब है हम रब से भी नहीं डरते। तो बंदे से डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो थोड़ी देर के लिए वक्ती डर इसलिए होता है कि हमको अपना काम नहीं किया हमने, लेकिन हमें कॉम्पनसेशन चाहिए, यानी हमने पैसे दें नौकरी, हमने नौकरी नहीं करनी, मौकरी करनी है, म्यूटनी करनी है, मसले करने हैं, ड्रामे करने हैं, लेकिन अब आप हमें मंथ के एंड पे पैसे दे दें आप, तो इस तरह कोई कंपनी भी आपके साथ नहीं चलेगी। जब ये कंपनी करती है तो उस वक्त कोई नहीं बोलता, क्योंकि कंपनी को वो इंसान नहीं समझते। कंपनी हालांकि सेपरेट एंटिटी है, वो इंसान ही की तरह ऑपरेट करती है, लेकिन उसका मकसद होता है, मिशन स्टेटमेंट बड़ी क्लियर होती है। इंसान जज्बात की वजह से रोज़ नए ड्रामे के अंदर फंस जाता है, रोज़ नई चीज़ में किसी चक्कर में आ जाता है, तो इसीलिए लोग उसके साथ ये गेम खेल जाते हैं। शहर में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग मुझको मिलते हैं, डैलस में भी, लाहौर में भी, पाकिस्तान में भी, तीन चार और मुल्कों में जिनमें मैं काम करता हूँ, मुझको लोग मिलते हैं और वो जो कहते हैं, जी फलां बंदा बड़ा तेज़ है, फलां बंदे से बच के रहिएगा, फलां मर्द से बच के रहिएगा, फलां औरत से बच के रहिएगा, फलां कंपनी से बच के रहिएगा। मैं उन तमाम लोगों से कहता हूँ, मैं क्यों किसी से बच के रहूँ, मेरे कुछ उसूल हैं, वो तीन चार सिंपल सिंपल से उसूल हैं। इन जब से मैंने पिछले 20 साल से इन चीज़ों पे अमल किया, किसी ने मुझे कोई धोखा नहीं दे सका, और वो सिंपल उसूल क्या है, मैंने आपकी गेमें खेलनी नहीं है, मुझे ना आपसे कुछ चाहिए, ना कुछ मामला करना है, ना मुझे आपके साथ पेपर का ऐसे साइन करने हैं, ना मुझे आपके साथ शेयर्स चाहिए, ना मुझे आपके बड़े बड़े ड्रामों में आना है। मैं एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हूँ, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए या उस सर्विस को किसी को देने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं और सादा हैं। इस पे जब आप डील करेंगे, ना आप मुझे कभी पकड़ पाएंगे, ना मैं आपको पकड़ पाऊंगा, क्योंकि पकड़ धकड़ का टाइम ही नहीं है हमारे पास। एक चीज़ आपको दी है, उसके बदले आपने कुछ देना है, सिंपल। एक सर्विस आपको दी है, उसके बदले आपने कुछ देना है। इस चीज़ को लिखना है तो लिख लो, इसके अलावा और किसी ड्रामेबाजी का मैं हिस्सा बनता ही नहीं हूँ। तो चलाक लोग, गेमर लोग कुछ कर ही नहीं सकते, वो आप उनके साथ कुछ गेम के अंदर आएंगे तो वो आपके साथ गेम करेंगे ना। तो गेम इतनी आप शादी कर देंगे तो कोई आपको ना धोखा देगा ना आप, यू विल एंड अप इन द कोर्ट्स, और अगर होता भी है तो आपको क्या चाहिए, आपको ले ले जान छोड़े। तो बिल्कुल इसी तरह आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की, कि ज़िंदगी में चलाकियां करने से, तेज़ियां करने से, जैसे आपने कहा कि मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, कोई वैल्यू नहीं उन बेचारों की। ये सारी चलाकियाँ धरी की धरी रह जाएंगी, ये सारी ठगियाँ, ड्रामे, ये सब का सब जो औरतें अपने शौहरों के साथ करती हैं, एंड में उनका वही हाल होना है जो उनका होना चाहिए। जो शौहर अपनी बीवियों के साथ, औलाद के साथ करते हैं, उनका वही हाल होगा जो उनका हाल होना चाहिए। मैं देख चुका, रोज़ देखता हूँ, और रोज़ मैं ये चीज़ें डील करता हूँ इन लोगों के साथ और इस मामलात में। तो आप किसी चीज़ का चक्कर नहीं दे सकते, आप बड़े लंबे अरसे के लिए कोई झूठ को लंबा चला नहीं सकते, आप कोई बड़ी गेम बना नहीं सकते, आप नेकी के ड्रामे कर नहीं सकते। या आप होते हैं या नहीं होते, या आप ऑनेस्ट होते हैं या नहीं होते, या आप चोर होते हैं या नहीं होते, और अगर आपसे कोई गलतियां हो गई हैं तो फिर आप उनको रेक्टिफाई करते हैं, उसकी पादाश में कफ़ारा अदा करते हैं, अपनी सज़ा लेते हैं, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ें किसी बंदे से इम्प्रेस होने की, या किसी को देख के डिप्रेस होने की, या किसी के साथ कम्पीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी लोगों की औकात ही नहीं बेचारों की। लोग अगर ये जिन लोगों की तरह लोग बनने की कोशिश करते हैं ना, आप यकीन करें, जब आप इनको जान जाएंगे ना, इनके असल हालात, इनकी सोच जान जाएंगे, इनको जब आप खाता हुआ देखेंगे, इनको जब आप अपने रिश्तों में डील करता हुआ देखेंगे, इनको जब अपने मामलात और रब के साथ जो मामलात हैं उसमें डील करता हुआ देखेंगे ना, तो एक ही इमोशन आपके अंदर से निकलेगा, तरस आएगा लोगों के ऊपर आपको। तरस के अलावा 99% लोगों के ऊपर कोई और इमोशन ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं, और वो जो 1% और 2% लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जिनको देख के आप इंस्पायर होते हैं, जिनको देख के आप खुश होते हैं, जिनको देख के आप में एनर्जी पैदा होती है, जिनको देख के सुन के उनसे बात करके उनसे मिल के उनसे हाथ मिला के आपको मोटिवेशन आती है, गुड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, आपको ज़िंदा ज़िंदा सा फील होता है अपना आप, आपकी थकावट उतरती है, आप खुश रहते हैं, ये वो इंसान है जो दुनिया में भी सरमाया है इंसानियत का और बाकी जो मामलात हैं हमारे उसमें भी सरमाए के तौर पर काम करते हैं। तो जब तक आप देखें फजूल चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय ना, आप जब अपने आप पर अपने काम पे ध्यान देंगे, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप नहीं जानते दुनिया बड़ी ऐसी है, दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया बड़ी मैनिपुलेटिव है, दुनिया बड़ी पागल है, दुनिया ऐसे करती है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, वो दुनिया मुझे भी नहीं जानती फिर। क्लियर, सिंपल समझने की बात यह है कि मुझे ऐसी मैनिपुलेटिव ड्रामेबाज चलाक गेमर दुनिया को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ में डील ही नहीं करता। तो जब मैं एक चीज़ में डील ही नहीं करता तो मुझे उस बारे में क्यों सोचना है, मैं क्यों ये सोचूं कि स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है पागल हो जा रही है, जब मैं स्टॉक मार्केट में हूँ ही नहीं, जब मैं दो नंबर के धंधे में हूँ ही नहीं, तो दो नंबर लोग क्या कर रहे हैं, वाई वुड आई बी वरीड अबाउट इट, दो नंबर लोग क्या कर सकते हैं मेरा, मैं क्यों टेंशन लूँ उनकी, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ ना, मैं उस मामले में हूँ, मैं अपने तरीके से अपनी चीज़ों को डील सही करके रखूँगा ताकि जब भी दो नंबरी का और ये गेम हमारे साथ टकराए तो उसको पता लग जाए देयर इज़ नथिंग मच टू डू। तो इन चीज़ों को ऐसे देखना और सोचना और समझना जब आप शुरू करेंगे ना, तो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ना, ये दुनिया कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही बंदा कुछ बिगाड़ सकता है, वो आप खुद हैं, और दूसरा जो आपका बिगाड़ सकता है वो आपका बिगाड़ना नहीं चाहता, वो रब की ज़ात है, वो कोई चीज़ नहीं बिगाड़ेगी। आपकी जब सेहत ख़राब होती है तो वो नहीं बिगाड़ रहा आपकी सेहत, हम चीज़ों को डिफरेंटली डील करते हैं। दुनिया में अगर हैं तो बीमारी भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हमको पकड़ सकता है, तो उस दुनिया में होने की वजह से हमारी कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं। दूसरा जो नुकसान हम खुद कर सकते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे फाइनेंशियल नुकसान, तो रब आपका फाइनेंशियल नुकसान नहीं करना चाहता, वो भी सिचुएशन में अंदर कभी नुकसान होता है कभी नहीं होती। तो वो कोई एक्चुअली ज़िंदगी ही एक इम्तिहान है, इसके बीच के इम्तिहान स्पेशली मुझ पे या आप पर नहीं डाले जाते, ये हम जिस इलाके में जिस इन्वायरमेंट में होते हैं उसी हिसाब से इम्तिहान होते हैं। एक इन्वायरमेंट में सबको चिकन पॉक्स हो रहा है, वहाँ पर आपको बेरी बेरी वाली दूसरी बीमारी ताउन नहीं हो सकती, क्योंकि सबको एक हो रही है तो वही हो रही होगी सबको उस एनवायरनमेंट में, उस एरिया में हम हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह हम पे ऑपरेट होती हैं। तो अगर हम इनको चीज़ों को इस तरह देखेंगे तो आप खुदा को भी इस मुक्त करें इस बात से कि उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया, या लोगों ने भी आपके साथ, आपको अच्छे बड़े बड़े लोग दिखाते हैं सब्ज़ बाग, हम मुंह उठा के वो सब्ज़ बाग ख़रीद लेते हैं, बड़े वजह से इस ये पैसा आपको इतने देंगे तो आपको इतने परसेंट मिलेगा, कुछ अरसे बाद वो गायब हो जाते हैं। तो जो कुछ हम करते हैं वो कंपनी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, उन्होंने आपको वो दिखाया जो आप देखना चाहते थे, आपने वो झूठ ख़रीदा, उन्होंने झूठ बेचा, आपने झूठ ख़रीदा, उस झूठ की सज़ा में आपको नुकसान हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप झूठ का धंधा करेंगे ही नहीं, या आप झूठों से कारोबार ही नहीं करेंगे, झूठे और झूठे आपको अच्छा समझें, आपसे प्यार करें, आपकी तारीफ़ें करें, जब आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, खुद पे काम करेंगे, तो कोई बंदा आपको इस तरह धोखा भी नहीं दे पाएगा। तरस गए हम पिछले 10 साल से किसी धोखे को, और जो अगर और जिनको लगता भी है उन्होंने हमें धोखा दिया किसी बात में वो भी झल्ले हैं, उनको नहीं पता हमें पहले से पता था, इसीलिए इतना बड़ा डैमेज नहीं कर पाया। तो ये बातें इंसान जब इंसान बनने की कोशिश करेगा तो उसको ये सब पता होता है। बेवकूफ़ इंसान जो होता है, अपने आप को धोखा देने वाला इंसान, खुद से झूठ बोलने वाला इंसान, रेड फ्लैग्स ना देख सकने वाला इंसान, रियलिटी में ना रहने वाला इंसान, अपने लिए भी मुसीबत है, दूसरों के लिए भी मुसीबत। मेहरबान, रेडियो आजाद जी। अस्सलाम
1: वालेकुम आजाद लाला।
0: वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जिस कॉइन में सलाम किया हमने उसी कॉइन में आपको जवाब दिया कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: कौन सा कॉइन चल रहा है? डॉलर्स में बात करती हैं कि आप पाउंड्स में?
1: पाउंड्स में।
0: ओ तेरी, क्योंकि पाउंड महंगा है इसलिए। अच्छा, मुझे याद ही नहीं रहता, हमें जो डॉलर मिल रहे हैं हमारा ध्यान इसके ऊपर है।
1: आप किसी भी कॉइन में बात कर लें आजाद अल्लाह, बस आपकी बात तो बात ही अलग है उसकी।
0: हम आपकी बात को कोइनी करके ना कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे।
1: तो अजादला भी जब अफशा बीबी जैसे आती हैं, यूं लगता है जैसे बस एनर्जी छा गई हो पूरी जगह से, माशाल्लाह से।
0: उसके बाद वो बेचारे भी, हाँ उसके बाद उन्होंने भी कहा, बीच में मैं 5-10 मिनट से बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा सांस 5-10 मिनट क्या, मैं 20 मिनट से बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा सांस कब लेंगे बीच में, मैं पानी पी लेता हूँ इसी बहाने।
1: अजादला हम इनको अफशा कहते हैं, और ये अफशा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अजादला हमारे साथ, हमारी कॉलीग होती थी वो इरेनियन थी, तो उनको हम, उनका नाम अफशा था, हम उनको अफशा बुलाते थे, तो वो बहुत माइंड करती, कहती ये अफशा नहीं है, कहते अफशान है ये।
0: इनको आप अफशा ही कह लें काफी है, क्योंकि और ज्यादा ना वो जॉन कहने वाले, और ये ज्यादातर लोग जो कहते हैं ना, ये कई लोग जो होते हैं, आपको एक और कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, जिन लोगों को आप अंकल या आंटियां कहते हैं ना, उनकी जान और रूह निकल जाती है ना, वो लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं अपनी एज को लेके, ठीक है, बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। इसी तरह जिन लोगों का नाम होता है ना, कोई भी एक नाम। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना जरूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आजाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आजाद। दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी ली तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज।
2: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम। इंस्पायर एफएम। इंस्पायर 105.1 एफएम।
3: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه that whoever fasts Ramadan with faith seeking reward his previous sins will be forgiven for him. Subhanallah.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious, marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting, and also enjoy a delicious 3-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at Rishta networking.co.uk.
8: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and duas. Ameen.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
12: हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन हेलो एंड वेलकम डैलस फोर्ट वर्थ एंड द होल वर्ल्ड लिसनिंग टू रेडियो आजाद वॉइस ऑफ द पीपल तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो सुन रहे हैं जी आप बोल के लब आजाद हैं तेरे
0: किसी का नाम दुर्र फशा है फर्ज करो ठीक है अब आप किसी को उसको दुर्र फशा नहीं कहेंगे तो वो कुछ और कहेंगे तो वो उसको आपको करेक्ट करेंगे एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट दुर्र फशा दिस इज़ दुर्र फशा ठीक है या वो कहेंगे ये ऐसे नहीं इसको ऐसे बताते हैं इन लोगों को अपने बारे में और अपने नाम के बारे में बहुत जोम है कोई शायद इट्स जस्ट नेम क्या फ़र्क पड़ता है अगले बंदा किसी और एक्सेंट का मालिक है किसी और ज़बान में वो आपसे कह रहा है जो भी वो कह रहा है या तो उसके लिए आसान सा कोई आपका लास्ट नेम आसान है वो बता दें उनको खान खान कह देंगे ख़त्म होगी बात लंबे नाम लंबी चीज़ अगर है तो वो उनका ज़रूरी नहीं है कि वो आपका नाम प्रॉपर लें इससे पता चलता है कि आप फिनकी आदमी हैं इससे पता चलता है आप कुछ चीज़ों में बहुत रिजिड हैं इससे पता चलता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना मैटर कर रही हैं क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई आपका हमारा नाम कैसे लेता है नहीं लेता आपने शादी करनी है बच्चे करने हैं उनसे
1: बिल्कुल सही है ज़्यादा हम तो उसको वही अफशा ही बुलाते थे आपका नाम अफशा ही है
0: अगर वो कह रही थी फशां कर लें फिर भी ठीक है चले उसको सामने फशां कर लें लेकिन जो जो भी है ये तो करीबी कुछ लोग होते हैं बट उनको आदमी ये बताता है टेक इट इजी इट्स जस्ट अ नेम आप अपना नाम नहीं हो आप अपना काम हो अपना अमल हो लोग आपसे खुद पूछेंगे आपका नाम बड़ा प्यारा है इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं जो लोग जिन्हें जो खुद आपसे इज्जत प्यार करेंगे ना वो पूछेंगे आपका ये नाम है इसका मतलब क्या है फलां है वो जब तक उस लेवल पे लोग आएंगे फिर ये बंदा बात करता है उनसे वरना नाम लिया उन्होंने नहीं लिया एक आम आदमी आपका नाम कैसे लेता है उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता तो मैंने देखा है ये तो अभी आपने पॉइंट ऐसा दिया तो मुझे ये ख्याल आ गया कि इसके पीछे पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी है इसके पीछे आपका पूरा बिहेवियर है अगर आप इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों को हम इस तरह डील करते हैं तो हम बड़ी चीज़ों में कितनी मुसीबत होंगे अगर हम छोटी बात को नहीं जाने देते
1: बिल्कुल सही है और लोग पता नहीं अजाला उनको क्यों इतना इम्पोर्टेंट होना इतना अच्छा लगता
0: है बिकॉज़ और कुछ भी तो नहीं है ना उनके अंदर कख नहीं है उनके अंदर क्या करें वो बेचारे उनकी साइड से भी सोचें एम्पथी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं चल में थोड़ा थोड़ा सा ना वेलवेट टच करते हैं ठीक है वो वेलवेट टच में उनको ये उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है किसी के पास पुराना फैमिली का एक नाम है जो फैमिली अच्छी थी जैसे मुसलमानों के पास कख नहीं है इनके पास पिछले 400-500 सालों में उन्होंने कख नहीं किया वो पिछली हिस्ट्री को हमने ज़ीरो ईजाद किया था उससे क्या फ़र्क पड़ता है बाबे हो ज़ीरो आपने ईजाद किया था अच्छा गुड ले लो इसके 5 रुपए बाकी इसको इस्तेमाल करके अगले चांद पे चले गए मार्स पे चले गए तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन आपको दे दे हम सारा इसके कोई रॉयल्टी थी जीरो की क्या इसी तरह कि हम पुराने ज़माने में माबेरे अबाव अजदाद ऐसे थे इस पे तो शर्म करनी चाहिए हमको अगर वो इतने कमाल थे हम कहाँ हैं हम तो उनके नाम लेने के काबिल भी नहीं हैं। तो इस तरह कोई नहीं सोचता, खाम खा बड़ी बड़ी बातें सोचते रहते हैं। पुराने ज़माने में हमारी हुकूमतें थी, अब तो आपके पास अभी भी 57 कंट्रीज़ में आपकी हुकूमतें हैं, एक छोटा सा डिसीजन आप नहीं ले सकते। एक मुल्क जो दुनिया में ऐसे खाम खा जो है वो चौधरी बना फिर रहा है छोटा सा, और वो सारे काम उल्टे कर रहा है, उसको पकड़ नहीं सकते आप, उसको आप सोशल बॉयकॉट नहीं कर सकते आप, मुल्क आपस में मिल के उनको आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, पूरी दुनिया वीडियो देख रही है, तस्वीरें देख रहे हैं, और क्या इस्लाम इस्लाम खेल रहे हैं हम लोग, खाम खा मजाक बनाए हुए हम लोगों ने, कुछ भी नहीं हमारे पल्ले। तो ज़ाहरी बात है जो होता है उसको ले कर चूसते रहते हैं, वो जो नहीं होती है कैंडी पकड़ के एक छोटा सा बच्चा करता रहता है और कहता है बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्या कैंडी खाने से प्रोटीन्स पूरे हो जाएंगे, फैट्स पूरे हो जाएंगे, बेसिक आपके कार्ब्स पूरे हो जाएंगे, एनर्जी बेसिक आ जाएगी आपको? नहीं, बस आप सिर्फ दुनिया में चीज़ को पकड़ के उसको करते रहना सिर्फ। इससे तुम्हारा दोस्त अच्छा था जिसने देखा, वो याद है आपको मैंने किस्सा सुनाया था?
1: दोबारा मुझे
0: वो मैंने तो अच्छा आपको आपको मैंने सिर्फ सुनाया है तो आपके जहन से वो इमेज नहीं जाता, मैंने तो देखा है।
1: मुझे लगता है उस स्टोरी के बाद मुझे ट्रॉमा हो गया।
0: हाँ जी, और उसने तो ऐसे वापस जाते हुए टेबल को टच करते ही उठाई और किया।
1: Oh my God.
0: और ये बात मैं अब उसकी, इतना वो मोटे हो गए हैं, गंजे हो गए हैं, इतने बड़े बड़े उन्होंने दाढ़ी रख ली है, इतना आपको बड़ा बंदा हो गया, लेकिन उसकी शक्ल देखते हुए मुझे वही बात याद आती है 30 साल से।
1: और उनको पता है कि ये सब कुछ आप, यानी उनको इस किस्से का पता है कि नहीं?
0: नहीं, वो बेचारे लोगों को तो ये भी नहीं पता, उनके बच्चे भी हैं, उन्होंने क्या कमाया था, क्या बोला था, उनकी क्या कमिटमेंट थी स्कूल, उनको अकेडमी के ज़माने की कख बातें नहीं याद। आप उनको याद भी कराएंगे उनको, उनको ये पता है मेरे पास प्लॉट कितने हैं, और एक प्लॉट अगर है तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, तो कैसे मैं करूँगा, घर वाले क्या कहेंगे, घर में ये जो मसला चल रहा है उसको मैंने कैसे, इससे बाहर निकलेंगे तो ये सारी बातें वो करेंगे। ये तो उन लोगों के लिए हैं जो ऑब्जर्वेशन रखते थे, इन्जॉय करते थे लाइफ को, चीज़ों को देख रहे थे, फ़न कर रहे थे, और अपने मसले शसले जब ख़त्म आते हैं ना, पिछले डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा कहा था एयरपोर्ट पर जब वो जाती हैं तो वो लोगों को देखती हैं, ऑब्ज़र्व करती हैं सारा कुछ कि कौन कहाँ जा रहा होगा, ये खुश हैं, किसको मिल रहे होंगे, क्या होगा, इनकी क्या ज़िंदगी होगी। तो उनको मैंने क्या जवाब दिया था, ये वो लोग, ये लग्जरी वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दोज हु आर पुट टुगेदर, जिनके टाइम के ऊपर अपनी चीज़ें ठीक होती हैं, जिनके फाइनेंसिस के मसले नहीं। आम बंदा तो एयरपोर्ट पे उतरता है, उसको लगता है बस उसने कोई अमेरिका फतह करना है, वहाँ से उसने सामान को टकराता हुआ जाता हुआ, इससे मिलता हुआ उससे मिलता हुआ, घुड़ी उतारता हुआ पहनता हुआ, फ़ोन को कनेक्ट करने की कोशिश करता हुआ, उसकी बैटरी डाउन हो रही है, वो ऊबर के चक्करों में पड़ा हुआ, आर पार देखता हुआ, तीन सार से टकराएगा, दो से सॉरी करेगा, एक के ऊपर चढ़ जाएगा, उसका पांव चढ़ा देगा, ये आम बंदा होता है, या उसका बैग किसी के पांव के ऊपर से गुजर जाएगा जैसे पीछे उसके कोई लगा हुआ है। तो ये है वो चीज़, ये आम आदमी बेचारा, तो उसके पैसे नहीं पूरे हो रहे, वो अगर अब वो ऊबर ले या बस ले या वहाँ से वो ट्रेन ले, उसके पास पैसे ही नहीं है, बेसिक खर्चे ही कभी उसने सीधे नहीं किए, लेकिन है वो बहुत अच्छा आदमी, उसका नाम अलेक्जेंडर है
1: जी, जी,
0: उसका नाम अलेक्जेंडर डुमो है।
1: नहीं अजादा ना, वैसे ये बहुत मजे की चीज होती है कि आप एयरपोर्ट पे लोगों को ऑब्जर्व करें, या स्पेशली हॉस्पिटल में जो वेटिंग रूम होते है उसमें हो गया, या शॉपिंग मॉल पे जब लाइक शॉपिंग ना करें बस बैठ जाएं, जस्ट देखें कि लोग क्या कर रहे हैं।
0: लेकिन ये वही कर सकता है ना जिसका दिमाग एक्टिवेटेड है, जिसको इंसानों में इंटरेस्ट है, जिसको ऑब्जर्वेशन में इंटरेस्ट है, जिसकी इमेजिनेशन किसी किस्म की होगी, जिसके खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे हैं, जो बीवी जिसने अभी बेगम से गर्लफ्रेंड से झूठ बोला हुआ है वो अभी फड़ा जाएगा, उसने चीज़ें कवर करनी, उसका दिमाग के अंदर कैपेसिटी नहीं है इन तमाम चीज़ों की, वो अपने जो टोपियाँ वो घुमाते हैं, लेडी हैं या जेंटलमैन है, तो वो टोपी घुमाने के चक्कर में बेचारे सोचते रहेंगे, तो उन बेचारों के लिए तो ये लग्जरी है ना।
1: आजादा ने मुझे आपसे ये बात पूछनी, जब लोग आपने कोई क्रिएटिव चीज देखते हैं, जैसे उनको पता है कि आप थोड़े क्रिएटिव हैं, तो फौरन बस वो ये बात आपसे करते हैं कि इसको बिजनेस बना ले, इससे पैसा कमा ले, व्हाई इज इट लाइक दिस? क्या इंसान जस्ट क्रिएटिव नहीं हो सकता, हर चीज को बस पैसा कमाना होता है?
0: आपने आपने एक चीज देखी होगी, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि आप एक काम करें
1: जी।
0: नहीं ठीक है, ये दो किस्म की, ये बड़ी कमाल ऑब्जर्वेशन है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, और इतने लोगों का इतना दिमाग ही नहीं होता कि इन चीज़ों को ऐसे सोचें और इसको ना क्वेश्चन बनाकर यू नो इससे विजडम कशीद करें। आप ऑब्जर्व करेंगी जिस जो भी क्रिएटिव आदमी को ये आइडिया देता है कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको मोनेटाइज करेंगे या इसको पैसे इसके ऊपर बनाएं, तो आप ये देखेंगे कि उस बंदे के अपने पास ये क्रिएटिव एबिलिटी नहीं। ऐसा ही होता है ज्यादातर
1: जी, बिल्कुल।
0: उसके पास वो दूसरा काइंड ऑफ ब्रेन है जो पैसे बनाता है और वो पैसों के बारे में सोचता है। तो इससे ये पता चलता है कि क्रिएटिव आदमी को रब ने, ज्यादातर लोग जो क्रिएटिव होते हैं वो क्योंकि नेचुरल एबिलिटी उनको रब ने दी होती है, तो उसको वो इतना सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो इनेट उनकी नेचर का एक हिस्सा है। क्लियर? ये करने से ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को अपनी नेचर का हिस्सा आपको साथ आराम से आसानी से मिल जाती है तो आपको उसकी इतनी कदर नहीं होती। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं जो जिनको ये फाइनेंशियल साइड या ये पैसा बनाने का और ये वाली साइड जो जिनकी एबिलिटी होती है, वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ माइंड के लोग होते हैं और ये रब ने इसलिए बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोग कि जब ये आपस में मिल जाएंगे तो उससे कोई क्रिएटिव काम मोनेटाइज हो गया, उससे पैसे बने, उससे लोगों को नौकरियां मिली, वो यू नो उससे आपका बाद में वही चीज़ पे आपका फोकस हो जाता है। लोग अपने अपने जॉब्स जिसमें वो थक जाते हैं, अक जाते हैं, वो छोड़कर इस काम में आ जाते हैं और फिर इस काम से पैसे भी बनते हैं, आपका यू नो पैशन भी होता है, फिर इस काम से बहुत सारे और लोगों को आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, वरना एक करना चाहे तो ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्रिएटिव साइड को ही वो खुश होते रहते हैं कि वो एक क्रिएटिव चीज़ है उनकी, और दूसरे जो हैं वो उस पर मोनेटाइज करते हैं और इससे एक बिज़नेस भी बन सकता है। अब ये दो किस्म डिफरेंट किस्म के लोग हैं। अब क्रिएटिव लोग जो ज़्यादा होते हैं उनको क्योंकि आसानी से मिलती है, तो वो ज़्यादातर ये रब की तरफ से है कि ज़्यादातर जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो अपनी किसी भी क्रिएटिव चीज़ को वैसे ही लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिएटिव होना रब की तरफ से एक रब का वस्फ है जो इंसान के अंदर आया। तो उस क्रिएटिविटी का इट डिमांड्स एक्चुअली दैट आप इसको लोगों के साथ शेयर करें। तो उसका कोई सच है, कोई ट्रूथ की बात है, कोई क्रिएटिव काम है, तो आप उसका हक है कि आप उसको रब की तरफ से आए आप उसको लोगों के साथ शेयर करें। अब इस पे पैसे को बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता, ये उसकी अपनी नेचर का हिस्सा है। लेकिन कई लोग हर चीज़ को, ये दो किस्म के लोग हो गए मैंने आपको बताया, ये दोनों मिलकर बिज़नेस भी कर सकते हैं और फिर आप अलग अलग अगर इनको सोचें तो एक बंदा हो सकता है उसको सोशल बिज़नेस बनाना चाहे, हो सकता है उसको कमर्शियल बनाना चाहे, हो सकता है उसको बिज़नेस बनाना ही ना चाहे, प्रोबोनो बस लोगों के साथ शेयर करके खुश हो जाता है, ये एक बंदा है। दूसरी तरफ जो बंदा है जो सिर्फ पैसे बनाना चाहता है, उसका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है, वो कोई सोशल बिज़नेस नहीं करना चाहता, अगर वो कोई उसमें से अच्छी चीज़ नहीं निकालना चाहता, उसकी कोई ज़कात नहीं निकालना चाहता, उसको कोई किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, वो सिर्फ मनी माइंडेड आदमी है, तो वो इसी तरह सोचता है हर चीज़ के बारे में। अब एक और, ये आपको तीन डिफरेंट सिनेरियोज़ दिए, अब एक चौथा सिनेरियो है। चौथे सिनेरियो में एक आदमी जो क्रिएटिव है और उसको और कोई काम नहीं करता, मोस्टली क्रिएटिव बाय नेचर लेजी होते, तो अगर वो कोई काम नहीं कर पाता तो इस काम की वजह से अगर वो अपना रोज़ी रोटी चलाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कोई और काम करता है, इस काम को वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, तो वो ये ज़रूर कर ले। लेकिन जो दूसरी तरफ, ये चार सिचुएशन हो गई, ठीक है, पाँचवीं सिचुएशन इसकी ये हो सकती है कि जो दुनिया ऐसी बन गई है कि हर चीज़ इट ऑलवेज बॉयल्स डाउन टू द मनी। कई घर, जब वो बंदा अमीर होता है तो कोई बंदे को उसकी खराबियां नज़र नहीं आती, ना उसके दोस्तों को ना उसकी फैमिली को खराबियां नज़र आती हैं। जैसे ही वो बंदा गरीब होने लगता है, मेरे कई दोस्तों के साथ ये हो रहा है, उसके साथ आपकी लड़ाई भी शुरू हो जाती है, लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं, लोग उसके साथ रिश्ते भी तोड़ना चाहते हैं, लोग दुश्मनियाँ भी डाल लेते हैं क्योंकि अब वो किसी जोगा नहीं रहा। इन चीज़ों को सामने रखते हुए इंसान ने ये सोचा कि पैसा ही अगर सब कुछ है तो क्यों ना सिर्फ पैसा कमाएं, क्योंकि पैसे वाले के रिश्ते भी नहीं टूटते, उससे लोग नाराज़ भी नहीं होते, उसके लोग साथ चलते हैं, वो अगर बदतमीज़ बद नाहिंजार बुरा आदमी भी हो, बूढ़ा भी हो जाए तो भी लोग उसको रिश्ता देना चाहते हैं, उसके साथ लोग रिश्ता रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपनी पार्टीज़ रखना चाहते हैं कि उनके इन दिनों में वो आ सकते हैं कि नहीं, ये सब कुछ वो करना चाहते हैं। तो फिर इंसान ने सोचा और फिर वो चॉकलेट फिल्म की जो लाइन थी जो मैं कभी नहीं भूलता, इरफान खान साहब की आवाज़ में डिलीवर हुई थी और उन्होंने कहा था कि पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं। ये इसलिए कहा था कि दुनिया ने ये आलम कर दिया है कि सिर्फ पैसा ही, और ये अभी से नहीं है, ये कारून के ज़माने से ऐसा था, जिनके खजानों की कुंजियां जो थी ना ऊँट लेकर फिरा करते थे, तो और ये पैसा जिसको चढ़ जाता है ना, जिसके दिमाग में इसका असर हो जाता है ना, उसके दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। इन्हीं ताकत और पावर, पैसा से ही पावर है, पैसे से ही कुर्सी है, तो इसी से लोग फिरौन बन जाते हैं, खुदाई का दावा भी करते हैं, नमरूद बन जाते हैं, खुदाई का दावा भी करते हैं। और जब ऐसा वक्त आता है कि जब इनका इक्तदार या इनकी पावर जाने लगती है, तब भी आम आदमी सोचता है यार इनको इतनी अकल नहीं थी। नहीं, क्योंकि मत मार देता है पैसा और पावर इंसान की। और इस बात का सबूत क्या है? इस बात का सबूत ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हर ज़माने में ना, अभी मूसा अलैहिस्सलाम कब एग्जिस्ट करते थे, तकरीबन 3000 साल पुरानी, उससे भी पहले की बात, ठीक है। तो 3000 साल पहले भी जब वो अच्छा काम या नेक काम करना चाहते थे तो इन्होंने उन पर क्या इल्ज़ाम लगाया, एक औरत पकड़ ली और उनको कहा जी आप ये बोलें कि उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की। तो इतने थके हुए लोग हैं ये, इनोवेटिव तो है नहीं ये, आज भी यही हरकतें करते हैं किसी बंदे पे, कोई औरत या कोई कुछ मतलब बंदी या कोई बच्चा या कुछ ऐसी चीज़ डाल के उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को एक महफिल के अंदर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ये किया है, तो उनको इतना, वो बहुत जलाली गुस्से वाले आदमी थे, तो वो जब उनकी जलाली तबीयत में जो उनको गुस्सा जब चढ़ा, तो और ये कारून लोगों ने ये मिलकर ड्रामा किया था, तो उन्होंने उसको कहा, उतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा, ज़मीन को हुक्म दिया कि इसको अपने अंदर निगल ले। तो वो कहते हैं कि वो जब ज़मीन में धंस रहा था उस वक्त भी उसने नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो या मुझे माफ़ करो या कुछ और, उसके पता है अल्फाज क्या थे, वो कह रहे हैं आप मुझे इसलिए ज़मीन में घुसा रहे हैं कि मेरा सारा माल जो है आप हथियाना चाहते हैं। तो अब गुस्से वाले जलाली मूड में बंदा हो और पैगंबर हो रब का और कलीमुल्लाह हो, रब से बात की उसने, तो उनकी जलाल जो सेकंड, गलत बात नहीं करनी होती जब बंदा को सख्ती में हो, तो उसके साथ उल्टी सीधी बात नहीं करनी होती, स्पेशली अगर वो हमेशा राइट पे हो, ठीक। तो बजाय उसके उधर ये एक तो वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उनको सख्ती उन्होंने की तो उन्होंने कहा सजा दी, अब वो रास्ते सजा के अंदर ही दूसरा गलत जुमला बोला, तो आगे पता फिर क्या डिसीजन आया,
1: क्या
0: जमीन को हुक्म दिया कि इसको इसके खजानों समेत जमीन में दफन कर दो, तो सारे का सारा सब कुछ दफन हो गया। तो इसीलिए लोगों को नहीं समझ आती कि, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ जब आप नीच सोच के मालिक होते हैं ना, तो आला सोच का बंदा आपकी या बंदी आपकी औकात से बहुत ऊपर होता है। अब आपसे क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है या होती हैं, तो आप क्या करते हैं, खुद तो आप ऊपर नहीं उठ सकते क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी सोच समझ के आना पड़ता है, एक पूरा जर्नी होता है, रब की मेहरबानी होती है, उनके किए हुए अमल होते हैं, उन लोगों की दुआएँ होती हैं, ये सब मिल के उसको बड़ा इंसान या बड़े बंदी बनाते हैं। अब आप ये सब तो कर नहीं सकते क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी नीच नीच गेम खेली है, तो अब आप क्या करते हैं, उस आदमी को अपने लेवल पे लेके आके उसके साथ डील करने की कोशिश करते हैं, उसको नीच, उस पर इल्ज़ाम लगा के कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसको घटिया और नीच साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मेरे लेवल पे आए, मैं उससे लड़ूं। अब इस बात को यहाँ से उठाएं और रब पे ले जाएं। ये जितने लोग रब की मैग्नैनिमिटी को, रब के जो ऑल नोइंग होने को और उसके कमाल होने को जब नहीं समझ पाते और उसको सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं, तो ये क्या अपनी सोच को जब खोल नहीं पाते तो ये इतने नीच सोच के साथ चले जाते हैं कि ये रब को इतना छोटा कर लेते हैं कि जो इनके जहन के मुताबिक सिर्फ इनसे प्यार करता है और सिर्फ इनके मज़हब को और इनको जो है वो अप्रिशिएट करता है और इनका ये और बाकी किसी का नहीं है, तो ये क्या करते हैं, उस रब की ज़ात को भी अपने मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक छोटा करते हैं पहले और फिर उसके साथ डील करते हैं। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट्स। मेक सेंस? ये करता हुआ आप देखती हैं लोगों को?
1: बहुत ज़्यादा।
0: लेकिन इस तरह हम सोचते नहीं हैं कि ये इस तरह साइकोलॉजी काम करती है, इस तरह नीचपन इंसान का काम करता है, इस तरह जो हैवानी हालत में इंसान होता है अपने सर्वाइवल के लिए, किसी का बच्चा भी खा सकता है, किसी की भी जान ले सकता है, और दूसरी तरफ जब इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, उसकी सोच बड़ी हो जाती है, तो वो लोगों की जान बचाने के लिए जिन बच्चों को वो जानता भी नहीं अपनी जान दे देता है, जिन लोगों को वो नहीं जानता उनको बचाने के चक्कर में भी अपनी जान दे देता है इंसान, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग के अंदर इंसान होना जो है वो बहुत आला और अरफा होता है बजाय इसके कि आदमी होना जिसने अपनी जान बचानी। ये फ़र्क होता है दोनों के बीच। और कोई भी हमारे इर्द गिर्द ऐसा इंसान हमको मिल जाए जिसके अंदर ये छोटी मोटी भी इस किस्म की जो है ना निशानियाँ हों, कोई मर्द हो, कोई औरत हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बच्चा हो, تو ہمیں خوش قسمت سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم ان کی پریزنس میں ہیں، یا ہم ان کو جانتے ہیں، یا ہم ان سے انسپریشن لیتے ہیں، یا ہم ان کی پریزنس میں ہیں. یہ انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ظرف بڑھتا ہے آپ کا، اچھے لوگوں سے، اچھی بات سے، اچھی سمجھ سے، اور یہ کرنے سے، سوچنے سے، دل کو بڑا کرنے سے، دنیا کی گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں اپنے آپ کو گرینڈ سمجھنے کے بجائے اس میں اپنا چھوٹا رول سمجھنا، چھوٹا سا رول سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، جو ذرے کے برابر ہے. بٹ اس ذرے کے اندر جب آپ جائیں گے اور اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر بہت بڑا کچھ آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے زندگی میں، اور اسپیشلی اس زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، فائبر آپٹکس کے زمانے میں، جہاں پہ آپ دنیا کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، دنیا کے ساتھ بہت سارے بزنسز کر سکتے ہیں ان ملکوں میں جن کو آپ نہ کبھی جانتے تھے نہ ملے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو اس زمانے میں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور کوئی چیز ڈاکٹر صاحب ابھی تو ہے آپ کے ذہن میں ایک آدھ سوال؟
1: نہیں آزاد، دو اور کوشچن. ایک اور
0: دو سوالوں سے تو آپ پورا شو لے جائیں گی ہمارا، بہترین.
1: اور کوئی تو نہیں ہے؟
0: کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے آج داڑھی بڑھائی ہوئی ہے، اور آج ہم آپ کو ایک ویژول دیتے ہیں، جتنے ہمارے سر پہ بال ہیں اتنی ہماری داڑھی مونچھ کے بال ہیں. بڑے دنوں سے میں یہ ویو لینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سالٹ اینڈ پیپر، اگر انسان کے پورے منہ پر ایک جیسے بال ہوں تو وہ کیسا لگے گا. اور اس کے لیے لیکن میں نے اوور بورڈ نہیں گیا. اگر میں اوور بورڈ جانا تب ہوتا کہ میں اپنی جو یہ جو نہیں ہوتے آئی براؤز، یہ بھی چھوٹے کرا لیتا. میں نے کہا اس کو رہنے دیتے ہیں، باقی چیزوں کو کر کے دیکھتے ہیں کیسے لگیں گے.
1: ٹھیک ہے لالا، یہ تو پھر ہم بھی دیکھیں گے.
0: یہ نہیں دیکھ پائیں گے آپ انشاءاللہ. جب تک چیز آپ کی ویژول کے حساب سے، استھیٹکس کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوتی، ہم نہیں پیش کریں گے. کیونکہ آپ اپنا، آپ مجھے بتائیں، آپ جب کیک بناتی ہیں تو کسی کو آدھا ادھورا بنا ہوا کیک پیش کرتی ہیں؟
1: نہیں نہیں آزادہ، بالکل نہیں.
0: بالکل اسی طرح، کیونکہ وہ لوگ آنکھ بھاتی چیز ہونی چاہیے. جب پورا بن جائے گا، اس کے اوپر تہ لگ جائے گی، اس کے اوپر جو بھی نوک پلک سنوار لی جائے گی، پھر آپ اس کو پیش کریں گے اپنے محبوب لوگوں کو. ایسے ہی ہوتا ہے،
1: بالکل.
0: کیونکہ دو چیزیں، ایک ان لوگوں کی رسپیکٹ جو آپ کرتے ہیں ان کو برا نہ لگے، لگے کہ ان کو رسپیکٹ فیل ہو کہ اتنی محنت کی گئی ہے، اور دوسرا چیز آپ کی کریٹیویٹی ہے، اس کو آپ بیسٹ فارم میں پیش کرنا چاہتے ہیں. ان دونوں کو ملا کے آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کی وینٹی جو ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. سوچتا ہے آدمی اس طرح، یہ وینٹی کے لیے نہیں ہے کہ میں اچھا لگوں، میں جیسا ہوں میں ایسا ہی ہوں، ایسا ہی لگ سکتا ہوں. یہی ہماری ناک ہے، یہی چھوٹی چھوٹی ہماری آنکھیں، یہی میڈیم سے ہمارے سخت قسم کے کان ہیں. یہ میں نے کسی کو نہیں کبھی بتایا، میرے کان اتنے سخت ہیں کان سے بندہ مار سکتا ہوں میں. یہ مجھے بھی ابھی خیال آیا جب میں دیکھ رہا اسکرین کے اوپر، تو کیونکہ میرا دوست جب ہم لڑتے تھے نا آپس میں تو کبھی کبھی نا سر مارتے تھے یا ناک مارتے تھے، تو مجھے کہتا تھا ظالم تو ناک سے بندہ مار سکتا ہے.
1: اللہ،
0: تو مجھے سے
1: آزاد اللہ، ماشاء اللہ سے آپ بہت، آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے. تو آپ کسی کی پکچر دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ سیدھا ہے، یہ چالاک ہے؟
0: بہت دفعہ بتایا میں نے، اور اگر آواز سن لوں، کوئی ایک آدھ دو منٹ کا کلپ سن لوں تو بھی بہت کچھ میں بتاتا ہوں لوگوں کے بارے میں. اور اس کے علاوہ اگر میں مل لوں آپ سے اور کام کر لوں تو پھر تو میں آپ کی پوری زندگی اوپر نیچے بتا سکتا ہوں.
1: تو یعنی پکچر سے آپ؟
0: ہاں جی، زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور کیسے پتا ہے آپ کو؟ کیسے اتنی سی بات سے آپ نے پتا لگا لی؟ فوٹو دیکھ کے آپ نے اس بندی کا بتا دیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا ہے یا مزاج کیسا ہونا ہے. تو میں ہنس پڑتا ہوں، میں ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتا. بائے دا وے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ کوئی نیک ہونے کی نشانی یا پہنچے ہوئے ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ انٹیوٹیو مائنڈ جو آپ کا ہوتا ہے، جو کہ سائڈ آف دا برین ہوتی ہے، اس میں ڈائریکٹ جو پہلی سوچ آپ کو آتی ہے، کیونکہ آپ اس سوچ کو چیک نہیں رکھتے، یا آپ اس کے اوپر نہیں کہ مجھ کو ایسا پیش کرنا ہے یا میرا اس میں کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے. جب آپ ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. کوئی انسان بھی دیکھ سکتا ہے. اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک سرٹن طریقے سے سامنے آئے. وہ چاہتا ہے کہ جی وہ اس کو اس کے بدلے کچھ چاہیے، یا اس کے بدلے اس کو پیسے چاہیے، یا اس کے بدلے عزت چاہیے، اس کے بدلے نام مقام چاہیے. آپ ان سارے چکروں سے جب باہر نکلیں گے، فری تھنکنگ جب آپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بہت سارے لوگ ہیں، اگر میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ بتایا بھی ہوا ہے یہ شو کے بعد، کسی شو میں آ کے کچھ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو اگر کبھی بتانا بھی چاہیں گے، اور بہت سارے لوگوں کو میں منع کرتا ہوں आपको पता है मैं जिन लोगों की काउंसलिंग करता हूँ या जिन लोगों को मैं कुछ बातें समझाता हूँ, पहली शर्त ये होती है आप किसी के साथ ये बात शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह दुश्मनें भी बढ़ जाती हैं उनके, जो जिनकी बाकी लोगों को वो बताते हैं तो वो हम पे तो वो समझते हैं हमने को पर्सनली ऐसा किया है, तो कुछ ऐसी बातें। तो इसलिए मैं बहुत कम, एक तो मैं लोगों से पर्सनल बात का मशवरा मैं बहुत कम, जब तक मैं किसी को जानूँ ना या इस काबिल ना समझूँ या मैं उसका हक ना समझूँ कि मुझे बताना चाहिए इनकी ज़िंदगी आसान होगी, तब तक मैं पर्सनल किसी के बात में बताता नहीं हूँ। लोगों से मैं पूछता हूँ, आप ये साइकोलॉजिस्ट तो नॉर्मली सुन लेते हैं बैठ के, आपने गुब्बार निकाला तो आप चले गए, लेकिन मैं नॉर्मली लोगों को सिचुएशंस देता हूँ, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाए तो आप क्या करेंगे, मैं उनको सोचने के तरीके बताता हूँ, सोचते भी वो खुद हैं फिर और उसके बाद डिसीजन भी वो खुद लेते हैं। ये और बात है कि जो कुछ भी वो सोच के आए होते हैं जाते हुए बिल्कुल वो चीज़ें उनके जहन में नहीं होती, क्योंकि ये सोचने का तरीका उन्होंने नहीं किया होता। फिगर आउट
1: सही असादला। तो असादला अभी जो आप ये बात कर रहे थे इससे मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, वो ये कि असादला वेरी
0: लेकिन एक बात एक पॉइंट एक पॉइंट बहुत अच्छा है अभी आया, कोई इंसान भी किसी की तस्वीर को देख के, आवाज़ को सुन के या उसके साथ छोटी मोटी डील करके, छोटी मोटी डील की बात करो।
13: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

دیکھیں میں جب امریکہ میں رہا ہوں نا, میں نیو یارک میں نے کافی عرصہ گزارا. نیو یارک جو ہے وہ امریکہ کا ایک طرح سے امیگریشن کیپٹل ہے. دنیا جہاں سے لوگ نیو یارک آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں نے سارا امریکہ دیکھا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں نیو یارک باقی امریکہ ایک طرف, نیو یارک ایک طرف. جو نیو یارک میں رہا ہے نا اس نے باقی امریکہ نہیں دیکھا, اور جس نے باقی امریکہ دیکھا ہے اس نے نیو یارک نہیں دیکھا. اپنی الگ دنیا ہے وہ. اوکے, خیر وہاں دنیا جہاں کے لوگ آتے ہیں, اور وہاں عجیب معاملہ ہے. ایک نیبرہڈ میں, ایک محلے میں سارے چائنیز موو ہو گئے, ساری دکانوں کے سائن چائنیز میں ہیں, سب چائنیز میں بات کر رہے ہیں. ایک نیبرہڈ میں سارے پورٹو ریکن موو ہو گئے, سب اسپینش میں بات کر رہے ہیں. میں وہاں کام بھی کرتا تھا ایک شو اسٹور میں, وہاں سارے اسپینش میں بات کرتے ہیں. انگلش میں بات کروں غصہ کریں گے, اوکے کہ پرابلم آتی ہے نا, نو ابلا اسپینیول سنیز, امریکہ میں رہ رہے ہو اسپینش نہیں آتی, شرم کرو, وہ اس طرح بات کریں گے وہاں پہ. آپ بروکلن میں چلے جاؤ, اٹلانٹک ایونیو پہ سارا یمنی نیبرہڈ ہے, سارے عربی میں سارے دکانیں ہیں, عربی میں سارے بات کر رہے ہیں, خطبہ عربی میں ہوتا ہے وہاں پر, اور دکانوں میں سارے عربی میں. یعنی آپ یمن میں داخل ہو گئے ہو ایک طرح سے. اس سے دو بلاک آگے جاؤ, وہ کیا نام ہے اٹلانٹک ایونیو پہ بہت بڑا جوئش نیبرہڈ ہے, وہاں سارے سائنس ہیبرو کے اندر ہیں. وہاں اور ایک اور نیبرہڈ میں گریک نیبرہڈ ہے, ایک اور نیبرہڈ میں جو ہے اٹالین نیبرہڈ. یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے محلے بنائے ہوئے, لیکن ساتھ ایک شہر بھی ہے. تو جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں نا, تو ہوتا کیا ہے, کیونکہ وہ سارے فورنرز ہیں, تو اصل میں جو وکٹم ہوتا ہے نا ان کا, جس زبان کی دھجیاں اڑتی ہیں, وہ ہے انگلش. تو دنیا کی سب سے خراب انگلش نیو یارک میں بولی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہر طرح سے, ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. اسی طرح سب سے عجیب زبان آپ کو دنیا میں ملے گی مکے میں. مکے میں آپ کو ملے گا کوئی یمنی بیٹھا جائے نماز بیچ رہا ہے, کہہ رہا ہے پانچ ریال پانچ ریال پانچ ریال. میں سمجھا میں مجھے عربی استعمال کرنے کو ملے گی وہاں پہ. میں گیا کسی سے, میں نے پوچھا این المطعم الباکستانی, پاکستانی ریسٹورینٹ کہاں پر ہے, کہتا ہے ان طلق سیدھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب مختلف کلچرز ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا, تو ایک زبان اور دوسری زبان آپس میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اسلام جب پھیلا, جب فتوحات ہوئیں, تو عرب جو صحرا میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ہزاروں سال, کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے. ان کی زبان خالص رہی کیونکہ ان میں کسی کو ان میں دلچسپی نہیں تھی. اگر رومی سلطنت روم ان پر حملہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ کیا ملے گا یار ریت کے بجائے, ریت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جو ایرانی سلطنت ہے, وہ کیا فائدہ لے گی عرب پہ حکومت کر کے؟ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, یہ بس بھیڑ بکریاں چلائیں گے, اونٹ اپنے چلائیں گے, تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں, خیر ہے. تو ان کو دنیا نے بھلا دیا تھا, اور جب دنیا نے ان کو بھلا دیا اور یہ تھوڑی بہت تجارت بھی کرتے تھے, اصل ان کی زبان باقی کلچر سے, باقی زبانوں سے 90% میں کہہ دوں آئسولیٹڈ رہی. باہر کی زبانوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ہزاروں سال, اور اس لیے ان کی زبان بہتر ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی. ایک اور بات آپ کو بتا دوں, جن سوسائٹیز میں بزنس اور تجارت اور عمارت زیادہ ہوتی ہے نا, ان سوسائٹیز میں فلسفہ اور شاعری اور ادب کم ہوتا ہے. کم اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سارے لڑکے لڑکیاں کون سے اسکول میں جا رہے ہیں؟ بزنس اسکول میں جا رہے ہیں, میڈیکل اسکول میں جا رہے ہیں, انجینئرنگ میں جا رہے ہیں, ٹریڈ میں جا رہے ہیں, ہے نا. اور کوئی بھی کہے میں نے انگلش لٹریچر میں پی ایچ ڈی کرنی ہے, تو اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. کوئی ہسٹری پڑھنا چاہے, کوئی فلاسفی پڑھنا چاہے, کوئی پوئٹری پڑھنا چاہے, کوئی اردو ادب پڑھنا چاہے, تو کہیں گے کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ. عرب کیا تھے؟ عرب اکیلے صحرا میں, بڑا ٹائم ہے جی شاعری کا, بہت ٹائم ہے لائنیں مارنے کا, بہت ٹائم ہے بڑا. اور ان میں سے جو زیادہ شاعری کرے گا اس کی واہ واہ جی, او ہو ہو ہو, یہ کلچر تھا ان کا. اب ان کے پاس نہ, جس طرح آپ یہاں پر کون سا شہر ہے جہاں وہ ورلڈ کپ کی فٹ بالز بنی تھی؟ سیالکوٹ کو فخر ہے اپنی فٹ بال پہ, نہیں کسی اور کو
किसी और शहर को फुटबॉल, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट बनता है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लेदर बनता है, हमारे यहाँ ये बनता है, हमारे यहाँ वो बनता है, फ़ख्र होता है ना। अरब क्या कहेंगे, हमारे यहाँ का जो जला हुआ पत्थर है ना, ओहो किस चीज़ पे फ़ख्र करें वो। क्योंकि इंसान की शख्सियत में, सोसाइटी की शनाख्त में होता है कि उसको किसी ना किसी चीज़ पर फ़ख्र करने की ज़रूरत होती है। तो अरब को हज़ारों साल से किस चीज़ पर फ़ख्र करने की का जवाब था, क्या थी एक चीज़? ना उनके पास बिल्डिंग है, ना उनके पास हाईवे है, ना उनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ना कोई सल्तनत है, ना जैसे रोम के पास है, जैसे यमनियों के पास है, जैसे वहाँ पर ईरानियों के पास है। वो कहते हैं इनके पास महल तो होंगे, जबान हमें आती है, जैसी लाइनें हम मारते हैं ना कोई नहीं मार सकता। और जब एक दफ़ा आपको एक चीज़ पे फ़ख्र हो जाए ना, तो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा अपसेस हो जाते हो। तो इन लोगों को कल्चरली ना अपनी जबान के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो गई, ऑब्सेशन, खास ऑब्सेशन। और फिर होता क्या था कि तनकीद का बड़ा कल्चर था इनमें। कोई शेर कर दे, कोई शेर सुना दे, लनल जफनातुल गुर यलमअन बिद्दुहा, यू नो व असयाफुना यजीना, वे बाकी याद नहीं आ रही क्या नाइन थी, बिलमाइल ना, कल निकाल के दिखाऊंगा आपको वो शेर। खैर पहली याद आ गई, हमारे पास वो एक एक कबीला फ़ख्र करता था कि वो कितना कितना वो क्या नाम है सदका करते हैं। तो अजफनातुल गौर, यानी हमारे पास जो डोंगे होते हैं ना, बोल्स को क्या कहते हैं तुम यार, प्याले, हमारे प्याले जो है ना वो भी चमकते हुए होते हैं, यलमाना बिद्दुहा, दिन के वक्त हमारे जफनात, हमारे प्याले चमकते हैं, यानी जो प्याले जिससे हम सदका करते हैं, यानी हम सदका भी करते हैं तो बड़े चमकीले प्यालों में करते हैं, यलमाना बिद्दुहा। तनकीद हो गई, जी आपने जफनात कहा था, ये जम्मू किला है, यानी आपके पास बहुत थोड़े से प्याले हैं, जिफान कहा होता तो ज़्यादा प्याले होते, पैसे तो हैं आपके पास, इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और फिर आपने बिद्दुहा कहा कि दिन में चमकते हैं, दिन में तो हर चीज़ चमकती है, पत्थर भी चमक रहा होता है, कहना चाहिए था रात में चमकते हैं। यानी कोई शायरी कर भी दे तो उसकी धजियाँ उड़ानी शुरू करते थे। और इस माहौल में फिर उनका अपना मुहावरा था, और मुहावरे की बात बहुत ज़रूरी है, हर सोसाइटी का अपना क्या होता है, मुहावरा। आप डिक्शनरी से ज़बान नहीं सीख सकते, डिक्शनरी से आपको कुछ अल्फाज तो आ जाएंगे, लेकिन असल जो ज़बान होती है ना वो किस में होती है, मुहावरे में। आप अगर अंग्रेज़ी में तर्जमा करो, मैं फलानी जगह गया और उन लोगों ने मुझसे ऐसे बात की, मेरी तो नाक कट गई, अब उसका आप अंग्रेज़ी में तर्जमा कर दो, मेरी नाक कट गई, यू नो आई वेंट टू, यहाँ पे कहूँ मेरी अपने यू नो वाइफ को मैसेज भेजूँ, आई वेंट टू दिस पार्टी एंड माय नोज गॉट कट ऑफ। तर्जुमे में मुहावरा ज़ाया हो जाता है, क्योंकि मुहावरे का ताल्लुक कल्चर के साथ होता है, समझ रहे हैं बात? जैसे जैसे कल्चर बदलता है, वैसे वैसे क्या बदलता है, मुहावरा बदलता है। आजकल जो मुहावरा उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है, मैं पूरे एतमाद से कहता हूँ 20 साल पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और 20 साल पहले जो मुहावरा इस्तेमाल हो रहा था वो 40 साल पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है, वैसे वैसे क्या बदल रहा है, मुहावरा बदल रहा है। सही बात है कि नहीं? अंग्रेजी का मुहावरा बदलता है कि नहीं? बड़ी जल्दी बदलता है। 80s में कहते थे दैट्स सो कूल, 90s में कहते हैं दैट्स सो हॉट, अब कहते हैं दैट्स फायर, दैट्स लिट, बदलता चला जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, सोसाइटी बदलती है, मुहावरा भी क्या होता है, बदलता है। अच्छा मैं बात समझा दूं, अरब की फतूहात हुई, अब जब फतूहात हुई तो और कल्चर्स आए कि नहीं? अब ऑल कल्चर्स आते हैं, दूसरे कल्चर्स आते हैं, तो उनकी ज़बान और अरबी ज़बान की आपस में क्लैश होती है कि नहीं? तो होनी है। अब कल्चर बदल रहा है तो और क्या बदलेगा साथ साथ, मुहावरा बदलेगा। अब कुरान का अपना मुहावरा है कि नहीं? लेकिन कुरान का मुहावरा इस्लाम के फैलने से पहले वाला है या इस्लाम के फैलने के बाद वाला है? पहले वाला है। अब वो पहले वाला मुहावरा तो मर रहा है, वो तो ख़त्म हो रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। अब वो जैसे ही इस्लाम, जैसे उसको फतह मिली, इस अरब का मुहावरा बनने लगा।
और जब वो मरने लगा तो एक बड़ा अजीब खतरा सामने आया, हो सकता है कुरान कोई मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हो और आज से 100 साल बाद किसी को पता भी ना हो कि यह मुहावरा था। यह खतरा था कि नहीं? तो जिस तरह एक कैंपेन हुई थी ना कि हमें हदीस जमा करनी है, और एक कैंपेन हुई थी कि हमें आसार जमा करने हैं, इसी तरह एक कैंपेन हुई थी हमें अरबी जबान का असली मुहावरा जमा करना है। और वो असली मुहावरा जमा करने के लिए आप शहर में नहीं जा सकते थे, आप बगदाद नहीं जा सकते थे, आप शाम नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो बड़े बड़े शहर हैं और शहरों में मुहावरा मर जाता था। असल मुहावरा था सहरा का। तो अल असमाई और शाफ़ई और ये बड़े बड़े उलमा, इन्होंने बहुत वक्त गुजारा है सहरा के अंदर, और जाकर वो कोई बच्ची किसी गांव में जो है, वो एक असमाई का किस्सा है, असमाई के बड़े अजीब अजीब किस्से होते हैं। असमाई अरबी के माहिर थे, उन्होंने अरबी ज़बान पर तहकीक की, अरबी ज़बान को समझने के लिए उन्होंने सहरा में कई कई साल गुजारे, और उनके बारे में मशहूर है कि वो शक्ल के ज़रा और लहजे के और अपने मिजाज के ज़रा बदतमीज़ थे। तो वो किसी के घर में गए, कहते हैं, खुद ही लिखते हैं, किसी के घर में गया, किसी ने मुझे देखा कि मैं वहाँ से नहीं हूँ, कबीले से, गांव से नहीं हूँ, तो उसने मुझे अपने घर में बुला लिया। तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा तो याद नहीं, मुझे ये याद है कि मैंने इससे बदसूरत इंसान कभी नहीं देखा, उसके बारे में कहते हैं। लेकिन उसने मुझे अपने घर में बुला लिया, मैं घर में गया तो उसकी बीवी ने मुझे सलाम किया, तो मैंने एक नज़र देख कर नीचे देखा, क्योंकि मैंने उससे कभी कोई खूबसूरत औरत नहीं देखी, और मैंने इस्तिग़फ़ार की, और बाकी वक्त मैं उस घर में बैठा कंफ्यूज रहा कि ये कैसे हो गया। तो उसने मैंने जो मेरा मेज़बान था, मैंने उससे पूछा कहीं ये हुआ कैसे, तो उसकी बीवी हंसने लगी, कहती है, आसा अन अहसना इला रब्बी व अना जज़ाउहू व आसा अन असअतु इला रब्बी व हुवा जज़ाई। हो सकता है कि ये अपने रब से बहुत अच्छा था और मैं इसकी जजा हूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं अपने रब से बहुत बुरी थी और ये मेरी जजा है। तो खैर, असमाई कहते हैं कि मुझे लफ्ज़ कुरान ने यूज़ किया है मताउल हयात दुनिया, मुझे मता समझ नहीं आ रहा था, ये मता है क्या चीज़। उनका फॉर्मूला क्या था कि वो जाके पूछते नहीं थे मता का मायना बता दो, क्योंकि मायना पूछोगे ना तो लोग अपनी तरफ से कोई बात कहेंगे। वो चाहते थे कि वहाँ बैठ के लोगों की बातें सुनते रहें, कोई ना कोई तो मता का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा ही। वो इंतज़ार में बैठे रहते थे कोई करे, कोई इस्तेमाल करे तो मुझे पता चले कि क्या है इसका नेचुरल यूसेज, क्या है ये अपने असल सियाक में कैसे इस्तेमाल होता है। तो थक हार के वो कहीं पहुंचे हैं तो एक बच्ची जो है वो बर्तन मांज रही थी झील के किनारे ब्रश से ना, तो बकरी आई और बकरी ने उसका ब्रश अपने मुंह में लिया और भाग गई। बच्ची रोने लगी, अखज़ा मताई, उसने मेरा मता ले लिया। वो डॉक्यूमेंट करते हैं मता के मायने, जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जिसका अपने अंदर कोई जौक, उसके अंदर कोई मज़ा नहीं होता, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल की चीज़ होती है, जो इस्तेमाल की चीज़ होती है वो मता होता है। इस तरह के नोट्स, इस तरह की कैंपेन शुरू हुई इस्लाम में। क्यों? क्योंकि कुरान सहरा की अरबी में नाजिल हुआ था। कुरान आज की अरबी, अलजज़ीरा की अरबी, तफसीर की किताबों की अरबी, बगदाद की अरबी, शाम की अरबी, दमिश्क की अरबी, इनकी अरबी में नाजिल नहीं हुआ था, और वो अरबी मुहावरे के एतबार से बदल रही थी। इसीलिए ज़रूरत थी पुराने मुहावरे को बरकरार रखने की। और पुराना मुहावरा पता है इस्लाम से पहले वाला मुहावरा है, और उस मुहावरे में सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ क्या थी पता आपको? शेर। और शेर, इसको कहते हैं शेर जाहिली। शेर जाहिली से क्या मुराद है? जाहिली दौर का शेर। और जाहिली दौर का शेर वो जहालत वाली बातें करता है,

मन में है तो ये हमेशा के लिए पैगाम कैसे है? क्योंकि अगर हमें इस तारीख में जाकर इसके मायने ढूंढने पड़ेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि यह हर दौर के लिए, हर सोसाइटी के लिए, हर सदी के लिए एक पैगाम हो? इसका आसान सा जवाब समझ लें आज के लिए, वो ये है कि आपको पता है ना, मैथमेटिक्स में मैट्रिक सिस्टम है और मैट्रिक सिस्टम में एक मीटर होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। तो वो जो मीटर है ना, वो एक ब्रॉन्ज या किसी मटेरियल का एक स्टैंडर्ड मीटर है जो शायद गालिबन स्विट्जरलैंड या स्वीडन में एक म्यूजियम में रूम टेम्परेचर के अंदर रखा हुआ है, और दुनिया का जो भी रूलर बनता है वो उसके मुताबिक बनता है। ये मीटर है, ये स्टैंडर्ड है, इसको हमने टेम्परेचर रूम कंट्रोल में रखा हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल में, और इसकी बुनियाद पे सारे मीटर्स बनेंगे और सारे मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स बनेंगे। यानी आपको एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने कुरान को एक दुनिया की हिदायत के लिए आखिरी स्टैंडर्ड दिया है कि नहीं, तो उसकी बहुत ज़रूरत है कि वो उसमें कोई तब्दीली ना आए। अब तब्दीली ना आने में मसला ये है कि क्योंकि वो ज़बान में है, अरबी ज़बान में है, और हर ज़बान का एक ही मसला है, जैसे जैसे सदियां गुजरती हैं ज़बान के साथ क्या होता है, तब्दीलियाँ आती हैं। उर्दू में कितनी तब्दीलियाँ आई हैं? उर्दू में मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि उर्दू के अल्फाज में ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। मेरे जो बहनोई हैं उनसे मैं एक दफ़ा रोड ट्रिप पर मैं जा रहा था, उनके साथ मैंने कहा आज हम लंबी ड्राइव है हमारी, रस्ते में सिर्फ उर्दू में बात करते हैं। मुझसे कहते हैं यार नुमान ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो वोकेबुलरी है ना उर्दू की वो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इंसान जो है वो फॉरगेट कर देता है। ये हुआ है उर्दू के साथ। और उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किसी ना किसी तरह बच गई, लेकिन आसानी से नहीं बची। आपको उसका भी एक छोटा सा वाक्य बता देता हूँ। मैं जब इस्लामाबाद में था बचपन में, 6 महीने मैंने इस्लामाबाद में गुजारे हैं, मेरी पैदाइश मेरी और मेरी बाची की रहमतुल्लाह जर्मनी की थी, और फिर हमने यहाँ पर 6 महीने गुजारे। 6 महीने हम G81 में रहते थे इस्लामाबाद में, तो वहाँ हमारा दाखिला हुआ स्कूल में। मुझे उर्दू नहीं आती, बाजी को उर्दू नहीं आती, मैं किंडरगार्टन में हूँ, पहली जमात में है, और वो उनका ना एग्ज़ाम था, एक इम्तिहान था, तो टीचर ने कहा अगले दिन गत्ते लेके आना। आपको पता होगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। बाजी का मैंने भी सुन लिया था गत्ते लेके आना। वो आके कहती है मामा कल क्लास में गधा लेके आना है, और फिर मैं उसको उसकी मैं तस्दीक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं नहीं मामा गद्दा लेके आना है, कल गद्दा लेके आना है। मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया था, आपके यहाँ होता है क्लास मॉनिटर है ना, मैं कराया खुशी खुशी, मैंने मामा से कहा मामा मुझे सारी क्लास का मंगेतर बना दिया। जबान में फ़र्क आता है, अगर आप उस कल्चर में ना हो आपकी ज़बान मुख्तलिफ होगी। तो मैं जो कल हम मुहावरे पढ़ेंगे ना, उसको हम कोशिश करेंगे समझने की कि इसका सही तर्जुमा मुहावरे के एतबार से क्या हो, उसमें खूबसूरती क्या है। तो कुरान ने असल में उस पुरानी अरबी के मुहावरे इस्तेमाल किए इसलिए क्योंकि सोसाइटी तो बदलती रहेगी, लेकिन ज़बान वही रहे जो उस ज़माने की थी, ताकि अब वो ओरिजिनल ज़बान समझने के बाद, जिस तरह मीटर का एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना, अब उसका आप कहीं भी एप्लीकेशन कर लो, उसके ज़रिए से कोई भी आप इजाद कर लो, लेकिन स्टैंडर्ड तो वही रहेगा ना, इसीलिए कुरान का वही लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड है। और उसको अगर आप हर कल्चर के साथ बदलते रहते या उसको प्रिजर्व ना करते, तो आज जिस तरह हम कुरान समझ रहे हैं ना, वो उस ज़माने से बहुत मुख्तलिफ हो जाता। मुस्तामिर का लफ्ज़, मुस्तामिर अरबी में, पुरानी अरबी में, सहरा की अरबी में मुस्तामिर का लफ्ज़ था, जो किसी चीज़ को बनाना चाहे, तामीर करना चाहे, कुरान ने इस्तेमाल किया वस्तअमरकुम फीहा, अल्लाह ताला ने चाहा कि तुम इस ज़मीन में तामीर करो। मुस्तामिर का लफ्ज़ आजकल की अरबी में, अखबारों की अरबी में और खुतबों की अरबी में मुस्तामिर का लफ्ज़ होता है, जो अंग्रेज़ ने हमारे साथ किया था वो मुस्तामरीन थे, कॉलोनाइजेशन को इस्तेमार कहते हैं। पूरी तरह से मुख्तलिफ लफ्ज़ है अरबी ज़बान का, कुरान एक मायने में यूज़ कर रहा है और बाकी सारी अरबी की किताबें आजकल किसी और मायने में यूज़ कर रही हैं, और इस तरह की सैकड़ों मिसालें हैं। इसीलिए अगर पुराना मुहावरा समझ ना आए और आप अरबी बेहतरीन बोल लो, इसका फिर भी ये मतलब नहीं होगा कि आपको कुरान समझ में आ गया। जिस तरह आप अच्छी भली उर्दू भी बोल लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गालिब या इकबाल या
200 سال پرانی کوئی تعلیم

0: आपको समझ में आ जाएगी। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी बात मैं आपसे करना चाह रहा था, कल बड़े खूबसूरत मुहावरे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बारकल्लाहु लि वलकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nurman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Pehli dafa jab maine ye course kiya, maine California mein kiya tha, Los Angeles mein. To ek ladka mere paas aaya class ke baad, 18 saal ka, bade gusse mein. Kehta mere paas Lakers tickets the, mere paas front row seats thi, VIP seats thi. लेकिन मेरी मदर ने कहा नहीं हम यहाँ पे जा रहे हैं डिवाइन स्पीच में। द होल वे आई वॉज कर्सिंग यू। तो कहता है बट यू नो आई हर्ड दिस टुनाइट, टुडे इज द फर्स्ट, आई एम 18 इयर्स ओल्ड, टुडे इज द फर्स्ट डे आई नो व्हाई आई एम मुस्लिम। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। सो दैट मेड मी रियली हैप्पी है कि ये एक्सपीरियंस भी होता है लोगों का। हम मुसलमान फैमिली के हिसाब से तो हैं, मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन शौरी तौर पे मुसलमान होना एक और चीज़ होती है, राइट? तो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बाद आपको भी एक नया कनेक्शन फील होगा कुरान के साथ।

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے آج کا سیشن تھوڑا ریلیکس ہوگا، لیکن آج بڑی خوبصورت باتیں قرآن کے بارے میں سیکھنے کو ملیں گی. اب سے آگے ہمارا کورس ایکچولی شروع ہو رہا ہے. یہ کورس میں نے جب تیار کیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو کیسے مرتب کروں گا. یہ کورس میں نے، یہ میرا پہلا کورس ہے ایکچولی، یہ میں نے تیار کیا تھا 2004 میں میں نے نوٹس تیار کیے تھے. اور میں جب یہاں آ رہا تھا یہ کورس پڑھانے کے لیے تو یہ پی ڈی ایف فائل کھولے مجھے کتنے 12-13 سال تو ہو گئے ہوں گے، تو سبحان اللہ. اور یہ آخری دفعہ جب میں نے پڑھایا تھا، پہلے میں نے امریکہ میں یہ سیمینار کرایا تھا آپ کو، تو میں 10 دن کے لیے کرا رہا ہوں، میں ایک ویکینڈ میں کرتا تھا یہ کورس. اور میں نے یہ امریکہ میں تقریباً 40 دفعہ کیا، اور اس کے بعد یورپ میں میں نے 20 دفعہ کیا، پھر میں نے ملیشیا اور انڈونیشیا میں کیے، اور امریکہ کی جو خصوصیت ہے میں نے یونیورسٹیز میں کیے یہ کورس انگلش میں نا، قرآن کے اوپر. اور اس میں کافی سارے لٹریچر کے پروفیسرز، فلاسفی کے پروفیسرز، کمپیریٹو ریلیجن کے پروفیسر، نان مسلمس، انہوں نے بھی کافی اٹینڈ کیے. میرے محدود علم تک تقریباً 18 لوگ تھے اس سال، ان 2 سالوں میں جو مسلمان ہوئے تھے اس پروگرام میں، سبحان اللہ، اکیڈیمیا میں سے. اور میں دعوت نہیں دے رہا تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں کلاس کے اندر، بٹ اٹ واز انف فار دیم، یو نو. تو اللہ تعالیٰ میری فیوریٹ کہانی اس کورس کے بارے میں جو ہے نا، وہ میں نے فاتحہ ایکسپلین کی تھی. میں تو آپ کو، تو ہمیں کتنے 2 دن لگ گئے تھے نا پورے فاتحہ کرنے میں، میں 1 رات میں کیا کرتا تھا پوری فاتحہ. پہلی دفعہ جب میں نے یہ کورس کیا، میں نے کیلیفورنیا میں کیا تھا، لاس اینجلس میں. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا کلاس کے بعد، 18 سال کا، بڑے غصے میں، اور پھر مجھے ایسے دیکھتا ہے، پھر مجھے گلے لگاتا ہے، پھر مجھے بتاتا ہے کہ مائی مام باٹ می لیکرز ٹکٹس. ڈو یو گائز نو ہو دا لیکرز آر؟ باسکٹ بال ٹیم، اینڈ دیٹس دا باسکٹ بال، کیلیفورنیا باسکٹ بال ٹیم بیک ان دا ڈے، رائٹ؟ کہتا ہے میرے پاس لیکرز ٹکٹس تھے، میرے پاس یو نو فرنٹ رو سیٹس تھیں، وی آئی پی سیٹس تھیں، لیکن میری مدر نے کہا نہیں ہم یہاں پہ جا رہے ہیں ڈیوائن اسپیچ میں. دا ہول وے آئی واز کرسنگ یو. تو میں نے کہا پتہ نہیں، اب جہاں تک اس نے جو کہانی سنائی تو مجھے لگا پتہ نہیں اب بدلہ لے گا کیا کرے گا. تو کہتا ہے بٹ یو نو آئی ہرڈ دس ٹو نائٹ، ٹوڈے از دا فرسٹ، آئی ایم 18 ایئرز اولڈ، ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے آئی نو وائی آئی ایم مسلم. دس واٹ ہی ٹولڈ می. سو دیٹ میڈ می ریئلی ہیپی کہ یہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے لوگوں کا. ہم مسلمان فیملی کے حساب سے تو ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شعوری طور پہ مسلمان ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، رائٹ؟ تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بھی ایک نیا کنیکشن فیل ہوگا قرآن کے ساتھ. چلیں محاوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا نام ہے سیکشن 2. سیکشن 1 تھا فاتحہ، سیکشن 2 ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم 8 مثالیں کریں گے، میں نے 8 مثالیں چنی ہیں. پہلی مثال ہوگی آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک ایسا محاورہ ہے جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک. لیکن یہ محاورہ اصل میں قرۃ اعین، یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے، اور قرآن سے پہلے یہ عرب استعمال کرتے تھے، اور عرب کے اس کے 2 استعمال تھے. میں دونوں پہلے استعمال سمجھا دوں، پھر قرآن کی طرف دیکھتے ہیں قرآن نے اس کو کیسے یوز کیا ہے. پہلا اس کا استعمال تھا دعا کسی کے لیے کرنا اور دعا کسی کے خلاف کرنا، یعنی اچھی دعا کرنا اور بد دعا دینا. بد دعا دینے کے لیے کہتے تھے اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، اسخن اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، یہ اس کے لیے بد دعا ہوتی تھی. اور کسی کے لیے دعا کرنی ہوتی تھی تو اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے. اور دونوں سے مراد رونا تھا. کہتے تھے جس طرح ہم کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو اور غم کے آنسو، ان کے ہاتھ تھا کہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور جو غم کے آنسو ہوتے ہیں وہ آنکھیں گرم کرتے ہیں. تو اصل میں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد تھا ایسی خوشی جو آپ کو رلا دے، خوشی سے انسان رونا شروع ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عربی میں. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ریسیو کر رہی ہے، بیٹا باہر گیا ہوا تھا کسی جاب پہ یا بزنس پہ گیا ہوا تھا، 2 سال نہیں دیکھا اس نے اپنی ماں کو، اور وہ ایئرپورٹ پہ اس کا ارائیولس پہ انتظار کر رہی ہے. اور اسی ایئرپورٹ پہ ایک اور ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کو الوداع کہہ رہی ہے، اور جو وہ دونوں ایک دوسرے کو، ایک ماں اپنے بیٹے کو گلے لگ رہی ہے ملتے ہوئے، और दूसरी माँ भी अपने बेटे को गले लग रही है उसको खुदाफिज कहते हुए। रो दोनों माएँ रही हैं लेकिन उनके रोने में फ़र्क है कि नहीं। जो रिसीव कर रही है, जो खुशामदीद कर रही है अपने बेटे को, उसकी आंखें गर्म हैं या ठंड हैं? हाँ, उसको उसकी आंखें ठंड हैं, और जो खुदाफिज कह रही है उसकी आंखें गर्म हैं। तो ये फ़र्क है इन दोनों का। ये पहला फ़र्क है, यानी ऐसी खुशी, इतनी खुशी मिले मुझे कि मेरी आंखें रोने पर आ जाएं। ये है कुर्रत आयुन। दूसरा, इसका इस्तेमाल होता था कि अरब जो है ना, वो सहरा में बहुत सफ़र करते थे, सहरा की ज़िंदगी थी उनकी, और सहरा में जब सफ़र करते थे तो आपने देखा होगा कि वो पगड़ी उनके यहाँ आम है, टर्बन जो वो पहनते हैं ना वो आम है, वो उसके मकासद हैं। असल में उसके मकासद में से एक मकसद ये है कि जब हवा तेज़ चलती है ना तो रेत भी साथ उठती है और वो मुंह में जाती है, नाक में जाती है, आंखों पे लगती है, तो वो अपनी जो पकड़ी है उससे वो अपनी शक्ल को ढक लेते थे। तो जिस चीज़ को हम आजकल निकाब कहते हैं ना, निकाब, ये असल में अरब मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल करते थे, ख़ासकर जब आंधियाँ वगैरह होती थी ना तो तकरीबन एक ही तरह के लगते थे, वो अपनी शक्ल को पूरी तरह ढक लेते थे, ठीक है। लेकिन कभी कभार जब आंधी इतनी तेज़ होती थी कि बल्कि उनको तकरीबन आंखें कवर करनी पड़ती थी, लेकिन अगर पूरी तरह कवर कर दें तो पता नहीं चलेगा जा कहाँ रहे हैं, तो बाकी शक्ल तो बच गई, अजाब किस पे आ रहा है? आंखों पे। और कहीं मुश्किल से जाकर तूफान के दौरान कोई गार मिल गया, कोई बड़ी चट्टान मिल गई, उसके साए में जाकर थोड़ी देर ज़रा आराम मिल गया आंखों को, तो वो आंखों से रेत निकाल ली और थोड़ी आंखों को रिलीफ मिली, उसको कहते थे कुर्रत आयुन। यानी जब आंखें तूफान में रेत की वजह से उन पर अजाब आ रहा है तो वो गर्म हो रही हैं, वो पक रही हैं, और जब वो गार में पहुंच गया या कहीं पनाह ले ली और आंखों को अब तकलीफ नहीं हो रही, तो उसको कहा जाता था कुर्रत आयुन, यानी मुसीबत से निकल कर, यानी आप जो है वो किसी पनाह में आ गए। ये दो मायने हैं कुर्रत आयुन के, आंखों की ठंडक के। अब देखते हैं कुरान ने इसको कैसे इस्तेमाल किया। والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما। سورة الفرقان میں اللہ تعالی نے ہمیں دعا سکھائی ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی اولاد میں سے اور اپنے ازواج میں سے، یعنی شوہر اور بیوی میں سے اور اپنی اولاد میں سے، آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب میں نے آپ کو دو باتیں بتائی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اتنی خوشی آئے کہ کیا ہو، رونا آ جائے، یعنی میری شادی میں اتنی خوشی ہو کہ مجھے रोना आ जाए। रोना तो आता है बड़ी अजीब दुआ है, क्योंकि दोस्त भी होते हैं, शादी होने लगती है तो कहते हैं यार चलो कोई बात नहीं, नहीं तुम्हें डराऊंगा नहीं मैं, कोई बात नहीं तुम्हारी डिफरेंट होगी। हर एक के दिमाग में होता है शादी के साथ डिप्रेशन होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सब्र नहीं होता, पहले बहुत अच्छे लगते थे अब बहुत बुरे लगते हैं, तुम तो कोई और ही निकले, तुम तो वो थे ही नहीं, तुम तो वो थी ही नहीं, जो आज मैं तो समझा था तुम्हें इस ख्याल से कि हम साथ होंगे, उस ख्याल से मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, इतनी खुशी होती थी, अब तुम नजर आते हो तो आंखों में आंसू आते हैं। इस दुआ की ज़रूरत है, इसीलिए ये दुआ कही गई है, क्योंकि शादी में आंखों की ठंडक जल्दी गायब हो जाती है। इसीलिए कहा है हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन। और ये इसलिए भी कहा गया है कि शादी के अंदर इस तरह की मोहब्बत होना कि एक दूसरे के अंदर इंसान दिली खुशी पाए, दिली खुशी हो शौहर से, दिली खुशी हो बीवी से, उसको देख के ही खुश हो जाए इंसान, उसके कमरे में होने से ही सांस आ जाए। होता क्या है, एक दफ़ा उसने दरवाज़ा बंद किया, वो गई बाहर, कुर्रत आयुन। तो ये कैसे हो कि शौहर और बीवी एक दूसरे के अंदर इस किस्म की खुशी पाएं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। इसीलिए हब का लफ्ज इस्तेमाल किया, हब निकला है हिबा से, और हिबा अरबी में कहते हैं तोहफे को, हब लना मिन वहबा, हमें एक तोहफा दीजिए अल्लाह ताला। ये भी नहीं कहा हमें दीजिए, कहा तोहफा दीजिए। अब बाकी चीज़ों के लिए हम कहते हैं आतीना फिर दुनिया हसना, ये नहीं कहते हबलना फिर दुनिया हसना, दीजिए, लेकिन यहाँ देने के लिए भी ख़ास देना, कैसा देना, तोहफा, यानी ये ऐसा तो ऐसी नेमत है जो बाकी नेमतों के मुकाबले में बहुत बड़ा तोहफा है। औलाद के अंदर और बीवी और शौहर के अंदर अल्लाह ताला आंखों की ठंडक दे। दूसरी बात क्या है कि इस तरह से मिसाल दी जा रही है बहुत मुख्तसर अल्फाज में कि बाहर की जो दुनिया है ना वो एक तूफान है। बाहर आप जाओ तो आपको हर तरह की मुश्किलात और ख़तरों का सामना करना है, और जैसे ही आप घर के अंदर आओगे ना, आप अपने शौहर के पास आओ या अपने बीवी के पास आओ, तो अब आप पनाह में आ गए, अब आपकी आंखों पर गर्मी नहीं लग रही, अब आपकी आंखें फाइनली ठंडक में हैं, अब आप पूरे पुरअमान में हैं, आप बिल्कुल हिफ्ज़ो अमान में हैं, अब यू आर कंप्लीटली सेफ। ये मकसद है कहने का। अब होता क्या है कि लड़ाइयां हो रही हैं घर में, तूफान बाहर नहीं है, तूफान कहाँ है? अंदर। और तूफान से बचने के लिए क्या करते हैं? मैं जा रहा हूं, वो बाहर जाके आंखों की ठंडक मिलती है, और अंदर जाने से पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर दरवाजे के अंदर या एक बड़ी सांस लेके फिर बैल बजाई। ये बताए अब जो सुकून था वो खत्म होने वाला है। इसीलिए ये दुआ अहम है। और फिर ये दुआ सिर्फ मियां बीवी के दरमियान नहीं बल्कि औलाद और वालदैन के दरमियान भी की गई, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्यूट होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे तो अनोइंग होते हैं शुरू से ही, लेकिन कुछ क्यूट होते हैं, मज़ा आता है उनके साथ, खेल कूद होती है, एक उम्र होती है जब वो आपकी सारी बातें सुनते हैं, फिर उनकी एक उम्र आती है कि वो बस आगे से जवाब देना शुरू कर देते हैं, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी निकल आती है, तुम तो पूरे इंसान बन गए हो, तुम्हारी तो अपनी सोच है, अपनी राय है, अपने ओपिनियंस हैं, और फिर वालदैन को पैनिक होता है, तो मेरी बातें नहीं मानते, ये तो आगे से जवाब देते हैं, इसकी अपनी राय क्यों है, ये पूरा इंसान क्यों बन रहा है, रोबोट क्यों नहीं बन रहा है ये, जैसे तुम छोटे थे तो बहुत अच्छे थे। आपको कभी कोई सुनने को मिलेगा छोटे थे तो बहुत अच्छे थे, पर तुम्हें क्या हो गया भाई? लेकिन आप अगर इस बात का अंदाज़ा करें कि जब इंसान बढ़ता है ना तो उसकी खुद मुख्तारी और आज़ादी, ज़हनी आज़ादी बढ़ती है, और उस वक्त इख्तिलाफ़ होना असल में ये नेचर का तकाजा है, ये तबीयत का तकाजा है, ये होना ही था और ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो फिर उसमें नफ्सियाती मर्ज़ है। असल में वो नेचुरल है कि वो जब होगा, जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा, लड़की या लड़का बड़े होंगे तो उनकी अपनी राय बनेगी, उनके इख्तिलाफात होंगे, उनके अपने जज्बात होंगे, ये तो नेचर का हिस्सा है। लेकिन उन सारे इख्तिलाफात के बावजूद मेरी दुआ ये है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पनाह मेरे अंदर पाए और मैं पनाह उनके अंदर पाऊँ, और खुशी मुझे उससे मिले इख्तिलाफात के बावजूद, और खुशी मुझे उससे और उससे मुझसे मिले। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युन। अब मैंने आपसे जो शुरू में बात की थी वो बार बार वापस आएगी। हर दुआ, अब आप हर दुआ जो कुरान में पढ़ेंगे ना, वो फातिहा की दुआ की रूह में पढ़ेंगे। फातिहा में कहा था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दुआ की थी ना, लेकिन दुआ से पहले अपनी कमिटमेंट पहले बताई थी, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन में किसने कमिटमेंट की है? हमने की, फिर दुआ की है। नस्तईन में भी क्या बात थी? पहले कोशिश मैंने करनी है, फिर अल्लाह ने मदद करनी है। जो भी दुआ आप कुरान में पढ़ेंगे, पहले से अंदाज़ा कर लो, पहले मैंने अपना काम करना है, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से मदद आनी है। अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा कि मेरी और मेरी बीवी के दरमियान कि उस रिश्ते में मोहब्बत ज़्यादा बढ़े, एक दूसरे पे एतमाद ज़्यादा बढ़े, हम एक दूसरे के अंदर पनाह पाएँ, अगर मैं इसकी तरफ कोशिश या काम नहीं कर रहा, तो फिर इस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने अपना हिस्सा नहीं किया। बच्चों के साथ ताल्लुकात सिर्फ दुआ से फिक्स नहीं हो जाएंगे, आपको अगर ख़ुद कम्युनिकेशन नहीं करनी उनके साथ, उनके साथ आपने खुद खुलकर बात नहीं करनी, उन समझना नहीं कि उनके जज्बात क्या, और अगर पेरेंट्स आपके पेरेंट्स का आपके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है, कुछ आप में से जो है 30-40 साल के भी हो गए हो और आपके वालदैन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इस दुआ की वजह से आप क्या सीख रहे हो? अब आपको उनमें जाके पना लेनी होगी और उनसे पूछना होगा कि भाई हमारी जो है लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, आपने कभी सोचा है क्यों होती हैं? फिर वो कहेंगे तुम बदतमीज़ हो इसलिए होती हैं, इसमें क्या मुश्किल है, तुम अगर अच्छे होते तो कभी लड़ाई ना होती, कभी कोई झगड़ा ना होता, तुम क्या समझते हो झगड़ा हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से होता है, और फिर दोबारा झगड़ा शुरू हो जाएगा, राइट? तो आपको फिर समझ नहीं आता कि आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म कैसे करें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हर एक की ज़िंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पेरेंट्स के साथ भी हुआ है, आई लव दैम, लेकिन उसको तोड़ने के कुछ तरीके हमें सोचने पड़ेंगे, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ता है। मैंने एक अपनी मदर के साथ किया था, इट हेल्प माई रिलेशनशिप विद माई मदर सो मच। मैंने उनसे पूछना शुरू किया, जब आप छोटी थी तो आपकी लाइफ कैसी थी, आप क्या करती थी, आपके दोस्त कैसे थे, आपकी लड़ाइयाँ किससे होती थी, खाला से कैसी लड़ाइयाँ होती थी आपकी, और जब जितना आप उनकी लाइफ में दिलचस्पी लोगे ना, जितना आप किसी के बारे में उनको सुनाना नहीं उनसे सुनना चाहोगे, क्योंकि हर एक की शिकायत क्या होती है, मेरी बात ये सुनते ही नहीं है, राइट, मेरी बात सुनते ही नहीं है। बच्चे कहते हैं मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनते, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, बीवी कहती है शौहर ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते, शौहर कहता है इसको तो मेरी बात सुनने का कोई शौक है ही नहीं, ये मेरी बात सुन के क्या करे, इसको तो बर्दाश्त नहीं होगी मेरी बात, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा। लेकिन सुनाने के बजाय आप किसी से कहें आप मुझे सुनाएं अपने बारे में, आपने खुद जाके इनिशिएट किया ना, तो ये कुर्रत आयुन का एक हो सकता है कि ये एक स्टेप हो। ये साइड पे मैं बात कर रहा हूँ लेकिन एक नसीहत है मेरी तरफ से ही कि हो सकता है उससे आपके घरों में आपके बच्चों के साथ और आपके स्पाउसेस के साथ एक छोटा सा रास्ता खुलना शुरू हो और इस दुआ की तरफ हम करीब आते चले जाएं। अच्छा, वकालत इमरात फिरऊन कुर्रत आयन ली, क्या प्यारी बात की थी उन्होंने, आसिया ने कहा था जब मूसा अलैहिस्सलाम पानी से टोकरी में होते हुए फिरौन के महल तक पहुंचे और उन्होंने बच्चे को उठा लिया, मालूम था कि ये बच्चा बनू इसराइल से है, उसकी रंगत से पता चल रहा था ये बनू इसराइल से है, इसका मतलब है कि इसको ऑफिशियली क्या करना चाहिए, कानून क्या कह रहा है, कत्ल कर देना चाहिए उसी वक्त। और वो बच्चे को लेकर फिरौन के सामने ले गई और फिरौन उस वक्त अपने जनरलों के साथ या अपने कमांडर्स के साथ क्या डिस्कशन कर रहा होगा, कितने मर गए, कितनी सड़कें रह गई, कितने कत्ल हो गए, और बीच में मीटिंग के दौरान आवाज आती है, वो भी बच्चों को मारने की बात कर रहे हैं और बेबी की आवाज आ गई, और माँ ने भी क्या किया, उसके सामने ले आई, आसिया माँ तो नहीं अडॉप्टिंग मदर, सामने ले आई और सामने लेके कहा कुर्रतु आइन इंदी, ये आंखों की ठंडक बनेगा मेरे लिए, मेरे लिए, उनके लिए नहीं कहा, फिरौन के लिए नहीं कहा, अपने लिए कहा। कुर्रत आइन से क्या मुराद है, मैंने दो बातें कही थी, इतनी खुशी के आंसू आए, क्यों, क्योंकि वो बेचारी गर्म आंसू तो रोज रोती है, फिरौन से शादी है, उसको भी पता है कितनी डिप्रेस है। अब लोग यू नो बढ़ा चढ़ा कर अपनी सिचुएशन बताते हैं, यार मैं किस फिरौन के साथ फंस गया हूं, वो वाकई फिरौन के साथ फंस गई हैं, राइट, तो वो तो है डिप्रेशन में, तो अब वो कह रही है आपको भी बताया आप कौन है, लेकिन कम अज कम मुझे आंखों की ठंडक इससे तो मिलेगी, इसको मेरे पास रहने दे, मुझे खुशी आएगी इससे, पूरा तो आई नहीं। और दूसरी बात थी कि वो एक तूफान के अंदर रह रही हैं और उस तूफान से पना उन्हें कब मिलेगी, जब वो इस बच्चे के साथ होंगी। फिर ये भी कह दिया साथ में, और लगता है कि आपको भी इस बच्चे की जरूरत है, वलक आपके लिए भी, यानी मालूम होता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने देखा ना तो उसके चेहरे पे भी कुछ फर्क आ गया और उन्होंने नोट किया कि ये तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तो लगता है इनको भी पसंद आ गया है, तो उन्होंने वलक का इजाफा कर दिया। शुरू में नहीं कहा था कुर्रतु आइनिन लना, ये हम दोनों के लिए आंखों की ठंडक, ये ऐसे नहीं कहा, अपनी बात की थी और फिर फिरौन का भी इजाफा किया वलक। ओके, फला, ये बड़ी प्यारी आयत है, फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, किसी इंसान को नहीं पता, किसी नफ्स को नहीं पता कि क्या आंखों की ठंडक उसके लिए छुपाई गई है, कहां से, कैसे, कब, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको रिलीफ देगी, उसको पनाह देगी, उसकी मुसीबतें एकदम से गायब हो जाएंगी, या कैसी ऐसी खुशी है, उसको गुमान भी नहीं था कि ऐसी खुशी हो सकती है उसकी जिंदगी में, ऐसी चीज उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा किसी नफ्स को नहीं पता, किसी इंसान को नहीं पता उसकी खुशी कहां से आएगी। इसमें बहुत सारी हिकमतें शामिल हैं और एक हिकमत यह भी शामिल है, हमें पूरा एतमाद होता है, हमें पता होता है हमारी खुशी कहां से आएगी, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं खुश नहीं हो सकता, ऐसा ही होता है ना, और इंसान पीछे पड़ जाता है एक एक गोल के पीछे, ये मिल जाए मुझे खुशी आ जाएगी, और वो अगर वो ना मिला जिंदगी बर्बाद। अल्लाह ताला इस चीज से हमें छुटकारा दिला रहे हैं, इस सोच से कि हम किसी एक चीज को पकड़ के अपने आप को पागल कर दें और कहें खुशी तो इसी में है वरना खुशी हो ही नहीं सकती। अल्लाह कह रहे हैं किसी नफ्स को नहीं मालूम कि उसकी आंखों की ठंडक, उसकी खुशी के आंसू किस चीज में छुपे हुए हैं, लेकिन छुपे हुए जरूर हैं। और फिर कहा जजा अम बीमा कानू यअमलून, जो अमल वो करते रहे हैं उसकी जजा के तौर पे उनको कोई खुशी आने वाली है। यानी इसमें यहां पर इख्तिसार नहीं किया कि कहा कि ये आखिरत में ही होगा, جب اللہ تعالیٰ خاص نہ کرے نا کہ یہ خاص آخرت کے لیے ہے یا خاص دنیا کے لیے ہے, تو عموم اللفظ یدل علی عموم المعنی, جس میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں ڈالی اس میں ہم قید بھی نہیں ڈالتے, یعنی یہ خوشی اس کا اشارہ دنیا کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کی طرف, دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
1: Subscribe now to the Bagina YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: کوئی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے ابایعوک علی الصلاتین, میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں, یعنی مسلمان ہونے کو تیار ہوں, نمازیں میں نے دو پڑھنی ہیں, پانچ نہیں پڑھنی میں نے, دو پڑھنی ہیں. کیا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین جو ہے نا یہ مکمل اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے, کوئی نیگوشیشن نہیں ہے, یا پورے پورے اسلام میں داخل ہو یا دفع ہو جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی, چلو ٹھیک ہے دونوں بازوں کے لیے. صحابہ حیران, یہ کیا ہو گیا, یا کوئی واقعی کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, جب نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی پڑھ لے گا.